0: all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
1: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
2: Higher end, check the audio.
0: Let's do it. Let's start.
3: Breaking stories, we're jumping straight into it.
0: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
1: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
0: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
4: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
1: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
0: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
6: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
9: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
0: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है. क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है. आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई.
10: जैसा आपने देखा वीडियो में, वही चीज मैंने भी देखी आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए. तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था. थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है. तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं थोड़े टाइम में, हम ऑन द वे ही है. और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है. तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
0: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
10: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था. तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे. आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ. तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया. मैं बोला वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे.
0: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं? इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है. डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
10: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी. तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में.
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मिथ के पिताजी हैं, आप और स्मिथ के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
10: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे.
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
10: देखो ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
10: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
10: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है। वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
10: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
10: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और क्या?
10: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
10: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
11: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन। As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: all the intelligence agencies are looking into, because multi-country investigation is going on in this regard, and everybody is trying to look into this aspect, because this is a matter of serious concern, because this is a matter of infiltration of extremist ideology in civil aviation industry.
1: Absolutely, Pradeep. This incident has raised many important questions which the authorities will have to answer, and the most important being who takes accountability when such an incident occurs. Thank you so much for joining us this morning and bringing us those crucial updates for our viewers. We're tracking the latest updates on this story. An update now on Captain Smith Marcher. Now, the Indian pilot who was injured on both the Fly Dubai flight 2 days ago. Sources say, in fact, they've told NDTV that Captain Smith Marcher's health condition is currently stable. However, a long recovery still remains. This is because the injuries are serious. Remember that Captain Smith Marcher suffered massive blood loss, has deep cuts, and his hands also are injured. Sources say that the recovery will be a long road for Captain Smith. All right, tracking some more updates that we're getting for you early this morning. Remember that a lot is coming up, especially the fact that the Indian Prime Minister has now in fact spoken to the Fly Dubai Captain Smith Marcher, inquiring about his health and has even wished him a speedy recovery. Listen into the conversation that the Indian Prime Minister had with Captain Smith Marcher.
2: Smith, namaste.
3: Namaste, sir.
2: Kaise ho abhi, tabiyat kaisi hai?
3: सर सब ठीक है सर, सब ठीक है।
2: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
3: यस सर।
2: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया और आपने स्मिथ को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मिथ, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: सर, मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आपने सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफर एक्साइट कर रहे, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने गांव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एग्जाम में 17 साल से जा जुड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है यहाँ बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि

0: यहाँ पे भी सऊदी में भी या मुक्तपण के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था। मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में, मैं जब भी मेरे को डर होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ। उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ने मेरे को बचाए। बस आपका एक कॉल आ गया, मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, और अब भी मेरे को हो रहा है, मेरे पे गर्व अब तक नहीं हो रहा था। अब हो गया सर, सॉरी मैं आपके सामने लौट रहा हूँ सर।
1: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं हो गए तो कहां होंगे?
0: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
1: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है। और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए। भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, उतनी हिम्मत से बात कर रही थी। सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
0: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरी गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
1: सही बात है।
0: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं। ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
1: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वान में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है। कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं। भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
0: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी। मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ जो स्लोली स्लोली होने वाला है, एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
1: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूं। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूं, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, और अब बिल्कुल पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है।

0: to tell the investigators that his intent was to crash the aircraft in Israel. And you know, going by the preliminary investigation also, there seems to be an intent which goes on to expose that he did want to crash the aircraft in Tel Aviv. What all do we know so far as per official sources? Please walk us through the details.
1: After he was apprehended and he was brought to Saudi Arabia, from there he had been shifted to UAE, where the questioning is being done. And during questioning, what he has indicated that he was planning to crash this aircraft in Israel because he wanted to inflict maximum casualty. And if you look at the timing of the when he attacked the Indian pilot, Smit Machar, and that time the aircraft was flying inside the Jordanian airspace, and it was just a few kilometers away from entering Israel. That means the plan was basically he wanted to attack an Indian pilot. After that, he wanted to have a control of the aircraft, and he wanted to nosedive and weaponize this aircraft and target Tel Aviv, where he wanted to crash the aircraft, because one, he would have killed all those on board, the passengers on board, and then he would have killed many more people on ground also, where the aircraft would have hit. It was a similar kind of a plan what actually Al-Qaeda terrorists did during 9/11, where they had hit the Twin Tower and inflicted maximum casualty. The plan was similar. Now, that is a matter of investigation, whether he was acting alone or whether he was working with some terror organization or working at behest of some of the countries. That's what actually right now all the intelligence agencies are looking into, because multi-country investigation is going on in this regard, and everybody is trying to look into this aspect, because this is a matter of serious concern, because this is a matter of infiltration of extremist ideology in civil aviation industry.
0: Absolutely, Pradeep. This incident has raised many important questions which the authorities will have to answer, and the most important being who takes accountability when such an incident occurs. Thank you so much for joining us this morning and bringing us those crucial updates for our viewers. We're tracking the latest updates on this story. An update now on Captain Smit Machar. Now, the Indian pilot who was injured on board the Fly Dubai flight 2 days ago. Sources say, in fact, they've told NDTV that Captain Smit Machar's health condition is currently stable. However, a long recovery still remains. This is because his injuries are serious. Remember that Captain Smit Machar suffered massive blood loss, has deep cuts, and his hands also are injured. Sources say that the recovery will be a long road for Captain Smit. All right, tracking some more updates that we're getting for you early this morning. Remember that a lot is coming up, especially the fact that the Indian Prime Minister has now in fact spoken to the Fly Dubai Captain Smit Machar, inquiring about his health, and has even wished him a speedy recovery. Listen into the conversation that the Indian Prime Minister had with Captain Smit Machar.
2: Smit, namaste.
3: Namaste, sir.
2: Kaise ho abhi, tabiyat kaisi hai?
3: सर सब ठीक है सर, सब ठीक है।
2: देखिए, पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा है।
4: महामृत्युंजय का जाप सब दूर चल रहे हैं।
3: यस सर।
4: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने एंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग हैं। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता। कल मुझे भूपेंद्र भाई से बात करने का मौका मिला, गीता बहन से बात की, सोनल बहन से बात की, जावा और बॉबी से तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने गीता बहन को कहा था कि आपका नाम गीता है लेकिन आपने कृष्ण की गीता को पूरी तरह पचा दिया, और आपने स्मित को उस साक्षात गीता के संस्कारों से उसका जीवन बनाया। स्मित, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
3: सर, मेरे लिए मैं मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं सभी, और आप मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी ऑफिसाइज कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत बहुत गर्व फील हो रहा है। मैं उस मोमेंट में सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं गिर चुका था, मेरे को इतने घाव लग चुके थे कि मैं गिर चुका था नीचे, एंड उस टाइम पे मैं बोला अगर मैं नहीं उठूंगा तो मैं एजर में 17 साल से ज्यादा दौड़ा था, मैं पिछले 11 साल से कैप्टन हूँ, और मुझे पता चलता है आंख बंद करके भी कि जहाज में क्या हो रहा है। जब मैं नीचे गिरा हुआ था तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था, बस वो खोल दिया सर, बाकी सब आ गए, और बाकी सब की भी उतनी उसमें रोल था, बट जान के मैं सर को बोल रहा था कि मैं अपनी जान के हिसाब से कर रहा था, एट द सेम टाइम मुझे इतना भी पता था कि मैं उन सबको नहीं मत दे सकता। बस उसके बाद मेरे को लोगों ने यहाँ पे भी सऊदी में भी यहाँ पे तो बन के इससे अच्छी केयर और इससे अच्छा मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकता था, एंड मैं सर मैं एक सिर्फ पॉजिटिविटी में जब भी मेरे को दर्द होता है मुझे एक ही चीज आती है, मैं सिर्फ हनुमान चालीसा बोलता हूँ, उस टाइम पे भी मैं सिर्फ हनुमान चालीसा ही बोल रहा था, अब मुझे पता है कि वो भगवान ही मेरे को बचाए, बस आपका एक कॉल आ गया मेरे को बहुत बहुत गर्व होता है, अब भी मेरे को हो रहा है मेरे पे गर्व, अब तक नहीं हो रहा था, अब हो गया सर, सॉरी मैं आपके सामने रो रहा हूँ सर।
2: स्मित, अगर मेरे सामने आप भावुक नहीं होंगे तो कहां होंगे?
3: सही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी आपसे बात होगी, कभी नहीं सोचा।
2: आपने इतना बड़ा काम किया है भाई कि हर देशवासी, आज दुनिया के लोग भी आपको देखने, आपसे बात करने के लिए बहुत ही आतुर है, और ये बात आपने जो बताई है हनुमान चालीसा की, इसके लिए तो मैं गीता बहन को प्रणाम करूंगा कि आपको ऐसे संस्कार दिए, भूपेंद्र भाई को प्रणाम करूंगा, कोना नहीं। और मैं आपको बताऊं, उसमें कम मेरी जब सोलन बहन से बात हुई तो मैं सरप्राइज था, इतनी स्वस्थता से वो बात कर रही थी, इतनी हिम्मत से बात कर रही थी, सचमुच मैंने कल्पना नहीं की थी कि सोनल बहन ऐसी परिस्थिति में इतनी स्वस्थता से बात कर सकती है, तो मैं समझता हूं कि आपने एक परिवार के नाते आपने सचमुच में पूरे देश का नाम रोशन किया है।
3: सर मैं रोज सुबह जब पूजा करता हूँ, मेरा 2 साल का बेटा मेरे गोद में बैठ के मेरे साथ हनुमान चालीसा मैं उसको सुनाता हूँ कि जो मुझे बोला गया है, क्योंकि आज हम लोग देश से दूर है, बट हमारी संस्कृति से दूर नहीं होनी चाहिए।
2: सही बात है,
3: और अभी तो यहाँ पे तो वो भी नहीं लगता कि हम देश से दूर हैं, ये यहाँ पे लोग बहुत बहुत बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से हमें रखते हैं।
2: आपको पता नहीं होगा, लोग सावरकुंडला में भी, वढ़वाण में भी, सब दूर एक ऐसे भावुक वातावरण बना दिया है, और पूरे हिंदुस्तान में तो है ही है, कल सभी मंदिरों में पूजा प्रार्थना आरती हुई, सभी तीर्थ क्षेत्रों में आरती हुई, और सब आपके दीर्घायु के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आप तो जल्दी स्वस्थ होने ही वाले हैं, भारत आपका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है, आप शरीर में कोई तकलीफ जो भी मैं समझ सकता हूँ, आप वीर पुरुष हैं तो आपने घावों को तो झेलना शायद आपके लिए बहुत आसान कर लिया है अपने।
3: नहीं सर, मैं उस गांव को गांव की तरह नहीं सोच रहा हूँ, बिकॉज़ वो मेरे को और भी फिर उतना मुश्किल होगा मेरा रिकवरी, मैं उसको एक जर्नी की तरह सोच रहा हूँ, जो स्लोली स्लोली होने वाला है एंड वो टाइम लेके होगा, बट मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये रिकवरी होगा और मैं एकदम ही स्वस्थ हो जाऊंगा।
4: मैं सऊदी सरकार का भी और यूएई सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, तो उन्होंने आपकी बहुत केयर की, मैं उनका भी आभारी हूँ। स्मित, आपको जब भी जरूरत लगे मैं एक फोन कॉल अवे हूँ, लेकिन आपने सचमुच में, वरना ये कल मैं देख रहा था लोगों ने सोशल मीडिया में जो अपनी भावनाएं व्यक्त की और लोगों ने कहा अगर ऐसा न होता तो पता नहीं हिंदुस्तान पर क्या क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों पर क्या बीतती, भारत के सभी पायलटों को किस प्रकार से देखा जाता। आपने इन सबको बचा लिया है, यानी बहुत बड़ा काम आपने किया है। जब मिलूंगा तब अंदर की बातें तो बाद में सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मोबाइल पर ऐसी बातें करूं मैं आपसे। और आप भी पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए और आप बिल्कुल, पूरा देश आपके साथ है। मैं ज्यादा आपको परेशान करना नहीं चाहता हूं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आज गांधी जयंती है, अहिंसा क्या होती है वो आपने जी करके दिखाया है। चलिए जय श्री कृष्ण, मेरा थोड़ी गुजराती में बात करे ली। बॉबी अने जेवा गुजराती बोले छे कि नहीं बोलता? गुजराती बोले छे। अच्छा, तो બાળકો મળવામ થઈ ગયું, બાળકોને ડોક્ટર એલાઉ કર્યા મળવા માટે?
3: મારી મોટી દીકરી આવી હતી પણ આ ઉપર તો જોઈ નહીં દીધી કે
4: અચ્છા અચ્છા
3: એ થોડી ઇમારતી બહુ ક્લોઝ છે,
4: હા
3: અને મારા નાના સન બે વર્ષ પછી એને નથી એલાઉ
4: કર્યું, નહીં હમણાં તો સાચું જ જોઈએ, પણ સોનલબેન ખૂબ હિંમત વાળા છે, કારણ કે આટલી સ્વસ્થતાથી મારી જોડે વાત કરી, નહીં તો મેં તો અનુભવ કર્યો છે કે આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ વાત જ, અને ફરિયાદનું નામો નિશાન ને ભૂપેન્દ્રભાઈ અને ગીતાબેન જોડે ગઈકાલે મુંબઈ એરપોર્ટ પર વાત કરી મેં, તો પણ ફરિયાદ એક નામો નિશાન નહીં, બસ એમની એક જ વાત હતી ને ભગવાન સારું જ કરશે,
3: બસ બસ એકદમ જ રહે છે
4: સર। ચાલો જય શ્રી કૃષ્ણ, અને ખૂબ જલ્દી સાજા થાઓ, પછી આપણે મળીએ છીએ।
3: યસ
4: સર, ગોડ બ્લેસ યુ, જય જય હિન્દ।
0: All right, on that talk, we're slipping into a short break. See you on the other side with more news and updates. Do stay on with us.
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

किया था, हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं।

0: फ्रॉम स्टार हेल्थ, चिंता मत कीजिए, कैशलेस क्लेम अप्रूव हो गया है।
1: जब भी भारत चिंता में होता है, हम साथ निभाते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस।
2: फ्रॉम एवरीडे केयर टू एडवांस्ड सुपर स्पेशलिटीज, उत्तर प्रदेश इज क्वाइटली रीबिल्डिंग इट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद एम्स, मॉडर्नाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड लोकल हेल्थ सेंटर्स एक्सपेंडिंग स्टेट वाइड। Quality treatment is finally reaching people right where they live, and the numbers prove it.
3: किसी चीज की जैसे ही कमी नहीं है, मतलब treatment अच्छा बढ़िया देते हैं डॉक्टर।
2: The transformation is everywhere. 85 medical colleges and 2 AIIMS in Gorakhpur and Raibareli. A network of district hospitals and health centers across every region.
4: Launch control 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit.
11: Ukraine is taking robot warfare to the next level. Its forces are already using ground robots to deliver supplies, evacuate wounded soldiers, and carry combat missions. And now Ukraine's former defense minister has launched what he calls a Manhattan Project for killer robots. The ambition, well, to develop machines capable of taking on some of the most dangerous battlefield missions with greater autonomy and less risk to human soldiers.

0: catastrophe. Listen in.
1: गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी
2: मैं अपनी

0: समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
1: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
0: जैसे जैसे हर माँ बाप का हो, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब भी उस नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
1: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
0: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मी थे पूरे घर वाले
1: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
1: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
0: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
1: जी,
0: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
1: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे?
0: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा। और मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
1: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
0: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी हो।
1: ये एक टेरर इंसिडेंट था भूपेंद्र जी, सारा दुनिया इसके बारे में बात कर रहा है, सारा दुनिया आपके बेटे का प्रशंसा कर रहा है अभी, क्या आपको लगता है कि एक पूरा एक ग्लोबल स्पॉटलाइट बन गया है आपके परिवार को लेकर? अब
0: जरूर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हम लोग तो एक आप बोलेंगे तो साधारण से हम लोग सिंपल जीवन जीने वाले आदमी हैं, और सब लोग पहले बोलते थे कि प्राउड मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है। मेरे हमारे घर में मेरे और मेरी वाइफ को और उनकी वाइफ को एक ही विचार आता था कि प्राउड मोमेंट भले है, लेकिन हमको हमारे लड़के को देखना है अच्छी तरह से पहले।
1: जी बिल्कुल, और जैसे प्रधानमंत्री ने कन्वे किया भूपेंद्र भाई, आज आपने देखा वो वीडियो जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का प्रेयर्स जो है, प्रार्थना जो है, जो कन्वे किया स्मित को, वो बिल्कुल सही है, पूरा नेशन एंटायर इंडिया आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रे कर रहा है अभी।
0: सही है, सही है, वो मैंने भी सुना और मैंने देखा कुछ वीडियो, और पूरे देशवासी को मैं पूरा आभार मानूंगा सबका के इस तरीके से सबने इतना अच्छा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, और ये सब सब लोग का आशीर्वाद है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और मेरे को विश्वास है।

0: से वो अगेन वापस आएगा और अच्छी तरह से फ्लाइंग करेगा।
1: भूपेंद्र भाई, स्मिथ की माँ की रिएक्शन क्या थी जब ये हुआ था, उनकी रिएक्शन क्या थी? सर
0: बहुत सेंसिटिव है, हम दोनों सेंसिटिव है बहुत ही, और हम लोग ने एक ही श्रद्धा रखा था कि भगवान जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, अपने साथ बुरा नहीं होगा।
1: और उनकी उनकी पत्नी और उनके छोटा बच्चा भी है, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट।
0: हम लोग को बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि वो दोनों बच्चे और स्मिथ की वाइफ दुबई में थे, हम लोग बॉम्बे में थे, और हम लोग की कंटिन्यूस फोन में बात चल रही थी कि मैं बोला बस भगवान का नाम लेते रहते, हम लोग भी निकल जाते हैं बॉम्बे से जल्दी, और डर ना मत, मैं मतलब हम लोग पहुंच ही रहे बस। ऐसे भी करके
1: जी
0: हम लोग ने अपने आप को संभाला है सब लोगों ने।
1: भूपेंद्र जी, आपने देखा होगा कि इज़राइल के प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने आपके बेटे को प्रेज़ किया है। बातचीत चल रही है कि शायद इज़राइल में एक ऑनर भी मिलेगा स्मिथ को, इसको लेकर आप क्या बोलेंगे?
0: बस बहुत खुशी हो रही है फादर मदर हम लोग दोनों को, बहुत अच्छा बात हुआ है, और जीवन जीवन में ऐसा मौका मिले तो जीवन अच्छा जिया है, सब शुरू हो जाएगा कि भाई कुछ किया अपन जीवन में।
1: और यहाँ इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस ने ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन जारी किया, मिलिंद देवरा ने एक चिट्ठी लिखा है प्रधानमंत्री को कि अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को, क्या आप सहमत हैं अशोक चक्र मिलना चाहिए स्मिथ को?
0: नहीं, मैं इस चीज के लिए नहीं बोल सकता हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि स्मिथ को वापस आना चाहिए या दुबई से ही काम करेंगे आगे जाकर? भूपेंद्र जी, आप उनके पिताजी हैं, आपके वरीज भी हैं, आप कंसर्न भी हैं, क्या आपको लगता है उनको वापस आना चाहिए भारत?
0: वो काम शायद जहां कर रहा है वहीं करेगा।
1: इसको लेकर जो इम्पैक्ट होगा एविएशन पर, भूपेंद्र जी थोड़ा डिटेल में आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में बताइए, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था कॉकपिट में उसको लेकर क्या आपको लगता है कि सिक्योरिटी लेकर, टेरर लेकर, एविएशन को लेकर असर पड़ेगा?
0: अभी वो अपनी कंपनी का सब लोग अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ऐसा चीज बहुत सालों में एक बार होता है और वो नहीं होना चाहिए प्रैक्टिकली, और उसके लिए जो भी चौकसाई करनी होगी वो कंपनी वाले करेंगे जरूर।
1: एक बात बताइए भूपेंद्र जी, सारा दुनिया आपका आपके बेटे को जानता है, अब उनका नाम पूरा रोशन हो गया है, लेकिन जो ओमानी कोपायलट था जो स्मिथ के साथ ऑपरेट कर रहा था इस फ्लाइट में, उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसका आइडेंटिटी किसी को पता नहीं है, बिल्कुल सीक्रेट है ये, इसके बारे में आपका क्या सोच है?
0: मेरे को उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।
1: किसी ने क्या आपको ब्रीफ किया है कि क्या हुआ था उस कॉकपिट में? किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने आपको क्या ब्रीफ किया है?
0: नहीं, मैं ब्रीफ करूंगा मेरे बेटे के साथ ही, जो भी समझना है पूरा उनके साथ ही।
1: जो ग्लोबल मीडिया में आपके बेटे के बहादुरी को लेकर जो मीडिया स्टोरीज चल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र जी? क्योंकि जैसे मैंने बताया इस इंटरव्यू के पहले, स्मिथ मच्छर जो है एक इंडियन पायलट नहीं है अब, एक वो ग्लोबल एक बहादुरी के एक आइकॉन है ऑलमोस्ट, क्या ये सही है? ही इज अ ग्लोबल सिटीजन नाउ सर।
0: ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: क्या आप सिटीजन्स को कुछ बोलना चाहेंगे एज द फादर ऑफ स्मिथ मच्छर, द मोस्ट फेमस इंडियन पायलट ऑफ आर जेनरेशन? सर उन्होंने जो किया है इंडिया को प्राउड किया है, क्या सिटीजन्स को कुछ बताएंगे? अब बहुत सारे यंग जेंजी भी देख रहे हैं अभी, स्मिथ जो है 38 साल के हैं, कुछ मैसेज है आपका?
0: मैं खाली एक स्मिथ का एक आपको नेचर और हमारा फैमिली का जो चलने का रास्ता है वो मैं खाली अपने जेंजी को खाली बोल सकता हूँ कि जो रिस्पेक्ट आज स्मिथ फादर मदर को दे रहा है और जिस तरीके से अपने फैमिली के साथ वो अच्छा लाइफ जी रहा है, तो जितना अच्छा सोचेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतना ऊपर वाला हेल्प करेगा जब भी तकलीफ आएगी। तो मैं यंगस्टर्स को जो अपग्रोन है अभी, जो नया लाइन में जाना चाहते हैं या अभी उनके हाथ में कोई सब्जेक्ट आया नहीं है, तो एक ही बात बोलूंगा कि सच्चाई और ईमानदारी है ना वो हमेशा जीतती है, और उसी को पकड़ के चलना वही अपने लिए सक्सेसफुल रहेगा तो आगे अपना इंडिया में सब जन अच्छी तरह से रह पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और भूपेन,
0: धन्यवाद। अभी
1: भूपेन जी, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, एक जो मोस्ट वायरल कमेंट है इस इंटरेक्शन में प्रधानमंत्री के साथ, वो था हनुमान चालीसा को लेकर। क्या स्मिथ बहुत रिलीजियस माइंडेड है, बहुत विश्वास रखते हैं हनुमान जी में, आपके परिवार में, इसके बारे में बताइए सर।
0: खाली एक ही लाइन में बोलूंगा कि हम लोग के घर में एक सिस्टम है कि एक सोते टाइम हम लोग हनुमान चालीसा सुनते हैं और लाइट ऑफ करते हैं, और सुबह स्मिथ ने एक अपने छोटे बच्चे को रोज सुबह मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा बोलने का काफी दिनों से चालू किया है। तो हमको खुशी है हम लोग के घर में इस तरीके का स्वभाव है सबका। ठीक है जी,
1: भूपेंद्र जी एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are so proud Thank of you. Smith Machar. Thank you very much. We wish you Thank the you. Very best. Thank we wish him a speedy recovery. And I know you are looking forward to meeting him again after he has just spoken to the Prime Minister. Thank you very much. Bhupendra Machar, father of the hero Indian pilot Smith, speaking first and exclusive here on NDTV.
2: Well, as you heard, the calls to honor Captain Smith are now growing, with calls for national recognition coming in from all across the country. The Federation of Indian Pilots has written to the Prime Minister's office seeking a National Bravery Award for the captain, while Shiv Sena Member Parliament Milind Deora has urged Prime Minister Modi to consider the Ashok Chakra. Right-hand lyricist Javed Akhtar has also called for Mahavir Chakra, while Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel has announced a special bravery award for Captain Smith. Meanwhile, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat has also demanded the Bharat Ratna, citing the captain's role in saving lives. With that, we're slipping into a short break. See you on the other side with more news and updates. Do stay on with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आके और मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities, NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट। Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: entered the new Parliament building amidst chants of mantras on May 28, 2023, carrying the historic golden scepter, the Sengol. He changed the political turf, forcing the opposition and even Rahul Gandhi to walk on it, fight on it. The RSS wanted Article 370 off. He did it. Hindutva dog fizzles have since then become a regular. The latest being the full version of Vande Mataram getting legislative protection and the remarks that Uniform Civil Code is coming soon. The deeper signal is that Modi changed the political electoral vocabulary and he made the parent organization RSS change.
1: जो सरसंघ चालक का दायित्व है, जो पद है, दायित्व नहीं है, जो पद है सरसंघ चालक का, वो पूरी ये जो जिसको आप लोग संघ परिवार या संघ सृष्टि कहते हो, वो उसमें सुप्रीम है। और मोहन जी को पहली बार या संघ के किसी भी सरसंघ चालक के सामने पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रोबेबली संगठन से भी बड़ा है और उनकी भी उतनी ही मेच्योरिटी, उतनी ही परिपक्वता, उतनी ही संभाल के साथ पूरी संगठन और सरकार दोनों का एक तारतम्य, सामंजस्य, एक सिंक होकर के दोनों चलना, ये अपने आप में मोहन जी की भी एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है, एक बहुत बहुत परिपक्वता और बहुत बढ़िया उनका वो सारी सिचुएशन का।
2: तो
1: भाई कभी कई कई बार होता भी है कि परिवार के मुखिया से बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बच्चे अलग हो जाते हैं।
2: अच्छा, डिफिकल्ट टास्क है इक्विलिब्रियम बिठाना, क्योंकि संघ की जो मूल भाव है उसमें व्यक्ति नहीं होता
1: है। बिल्कुल ठीक बात है,
2: ठीक है। एंड यहाँ एक आपका ही लीडर, आपके ही रैंक से निकला हुआ शख्स सोलर सिस्टम का सूर्य हो जाता है,
1: मगर मुझे लगता है कि सोलर सिस्टम के जो सब ग्रह हैं और जो सूर्य भी है, सबको अपनी मर्यादा मालूम है, मर्यादा से बाहर कोई नहीं जा रहा है।
2: ओके। लेकिन ये आप लोग ये देखते हैं, कभी ऐसा हुआ है, कभी एक समय आया था गुजरात के समय में जब कहा जाता था कि संघ इज फीलिंग नेग्लेक्टेड।
1: मुझे लगता है जो समन्वय बैठकें प्रारंभ हुई हैं संघ की, जो चल रही हैं पिछले कई वर्षों से, जिसकी बीच बीच में हर छः महीने में एक बार होती है तो खबर भी बनती है, तो मुझे लगता है समन्वय बैठकों में जितने भी नोट्स एक्सचेंज होने होते हैं, क्योंकि उधर ये सब समाज क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी विविध संगठन हैं, ये सब समाज क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उधर सरकार के लोग भी आते हैं, जो सरकार में संघ के स्वयंसेवक हैं वो आते हैं, उनके साथ डिस्कशन होता है, नोट्स एक्सचेंज होते हैं, और जिस उसकी आप मतलब जो निगलेक्ट फील करने वाला जो आप इशू मानते हैं, मुझे नहीं लगता आज की डेट में ऐसा कोई भाव है कि संघ कहीं भी निगलेक्ट।
2: नहीं, अभी आया था कि 2024 में संघ थोड़ी विड्रॉ कर गई थी, नाराज थी, संघ उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया।
1: अब ये भी पता नहीं ये मिथ किसने क्रिएट की है और किसने बनाई है। हमारे कार्यकर्ता तो 2024 के चुनाव में दिल्ली में कम से कम मैं जानता हूँ थक गए थे कि साहब इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन हमने कभी नहीं किया। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने परिवार में, फॉर दैट सेक, आप एक कोई भी एक निर्णय अपने आप कर लेते हो क्या? और हमारे यार मतलब कोई एक एक दायित्व पर एक कार्यकर्ता रहता है, हमें लगता है यार इसने इतना बड़ा काम खड़ा कर दिया, इसकी रिप्लेसमेंट कैसे होगी? और जो दूसरा आता है वो उससे वहाँ से आगे लेके चलता है, तभी तो इतना बड़े हुए पिछले 100 साल में।
0: The ideological drilling by RSS and BJP was tried in the past, but it didn't really break the rock because the Hindu monolith depended on coalition governments, undelivered promises, empty stomachs and very angry minds. Modi had an advantage. He entered electoral politics in 2001. At 51, at that time, he had spent almost 3 decades as an RSS activist, traveling across India's diverse, complex landscape, and learned what people want, the Sarkari bottlenecks, what clicks among the voters. That is why as CM and later as PM, he has launched big ticket welfare schemes, one-time fix for old problems. Today, let's for example see, there are 740 fully funded and managed central welfare schemes. 26 central flagship schemes. Governments in the past have launched welfare schemes, but schemes faltered. They didn't create votes. Modi changed that. He went direct in the distribution of the benefits, removed the intermediaries, used technology. Till date, approximately 4.5 lakh crore has been saved by the central government by plugging leakages in government schemes. He leaned on the bureaucracy. He monitored the Sarkari implementation. But there were two standout elements about what Modi was doing as Prime Minister or as Chief Minister earlier. One, he put his weight behind each and every scheme. He owned them. He announced them even from the Red Fort.
3: क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे हमारा गांव हमारा शहर हमारा गली हमारा मोहल्ला हमारी स्कूल हमारे मंदिर हमारी अस्पताल सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं
0: Second, he added the cultural spin to schemes. Names of schemes were drawn from the Hindu vocabulary, not some random name. Jandhan, Ayushman, Vande Bharat, Atal Setu are examples. Names that sound respecting the beneficiary, all reaching millions of households with a Modi face. A direct patron-client bond, bypassing state governments totally. Backed by the Mann Ki Baat, Direct Connect. These bonds have helped BJP and Modi. There have been elections where voters angry with the BJP didn't vote against it. They honored a Lakshman Rekha called Narendra Modi.
4: Any program when we started, there's a sense of ownership, you know. Jal Jeevan Mission, Jal Jeevan. See, imagine that.
5: Water is life.
4: You know, something. Earlier, there used to be water supply program, which name used to be Accelerated Rural Water Supply Program. I mean, it is for rural people. They won't be able to connect. But when you say Jal Jeevan Mission, they will be able to connect. Swachh Bharat Mission. Swachh Bharat. People are able to connect with this word, you know. Earlier, the name was like Total Sanitation Campaign. Very anglicized.
5: Beti Bachao, Beti Padhao.
4: So this tremendous understanding of people's psyche, their civilizational ethos, their culture, you know, that makes, you know.
5: I was in meetings with him. Did you hear him say, ki main aaj se 30 saal pehle wahan gaya tha, aur wahan maine aisa dekha tha.
4: Yeah, he is. In fact, if you see every program has some kind of linkage with his experience. Take Ayushman Bharat, one example I'll give. He has seen it on ground that people are basically selling their jewelry or property or, you know, this thing for treatment. Mm-hmm. So when Ayushman Bharat was conceptualized and launched, the basic background was this, that people basically when have this kind of problem, health issues in the family, I think the whole family gets, you know. If you look at the logo of every program, logo of any program, you will find that it's getting connected with people's thought. Take Swachh Bharat Mission, Gandhiji is too special because Gandhi was, this thing. Take Jal Jeevan Mission, it is a water drop and there is a tap. So this clarity of thought, this culture,
5: and in
4: all these things, he is personally involved. For him, no scheme is small or big. For somebody, it might be small scheme or big or, you know. But whatever scheme he starts during his time or started, he has ownership.
5: And that is why in the public, people don't need to be told ki kisne kiya.
4: No.
5: So it has political fallout also then.
4: Political fallout is one thing, but more important to me is that he is promoting that program. So Swachhata he is promoting, Healthy India he is promoting, Poshan he is promoting, Jal Jeevan Mission, tap water he is promoting, rainwater harvesting he is promoting, you know. This promotion of the program basically help in developing that culture, that what we call basically that good governance, or you will say that, you know, that each and every part, segment of society is involved in that program. Sabka Saath Sabka Vikas is what end of the day? That yes, every section of society should get into it.
0: The brand building involved global Indians, players and playgrounds, right since the days of Gujarat. As Prime Minister, it began with his New York's Madison Square outing in 2014. When he made Indians settle abroad, part of the Bharat Pe Garv billboard.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: ज्यादा भारी है? दिखा
1: वो भी ज्यादा भारी है। एक
0: दो अपने दो दो मेडल्स एनडीटीवी के
1: ही
0: दर्शकों
1: है
0: को, कुमकुम -कुम.
1: तो बता, एक ही है।
0: एक ही तुम्हारे पास है. ओके, फिलहाल मुझे ये बताओ कि दो दो बार आप तुमने साउथ कोरियंस को हराया है फाइनल में, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा साउथ कोरिया को हराना?
1: बताओ तो, मतलब मैंने सामने देखा है नहीं कि कौन है। मतलब मैं आज सुबह से आई, तब से मुझे पता था कि मेरा पहला ही मैच कोरिया के साथ है, और जो कांग है उसके साथ भी मैं बहुत बार मतलब मैच जो है विजुअलाइज कर चुकी हूँ, सो बहुत खुद पे भरोसा था इसलिए।
0: कुमकुम, तुम डेब्यू कर रहे हो एशियन गेम्स में, पहली बार ऐसे गेम्स का माहौल तुमने देखा है, जब तुम आए इतना सब कुछ देखे, तुम्हें क्या लगा, क्या क्या कुछ इम्प्रेशंस लेके तुम वापस जा रही हो?
1: मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब सब बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। मतलब इसके पहले भी मैं अभी 4 वर्ल्ड कप खेल चुकी हूँ, तो इस बार कुछ अलग फीलिंग नहीं आई, पर यहाँ पे आने से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी और एक्साइटेड भी थी। फर्स्ट एशियन गेम्स है, क्या होगा।
0: मुझे बात बताओ, जब फाइनल चल रहा था तुम्हारा तो तुम पीछे थे, लेकिन तुमने रिकवर किया, तुमने कम बैक किया. व्हाट डिड इट टेक फॉर यू टू कम बैक? क्या चाहिए था उस मोमेंट में कम बैक करने के लिए?
1: क्या बोला? हाँ
0: तुमने कम बैक किया फाइनल में, तुमने कम बैक किया क्योंकि तुम पीछे चल रहे थे, तो क्या चाहिए था, क्या मेंटालिटी चाहिए था उस वक्त कम बैक करने के लिए?
1: कमबैक के लिए खुद पे भरोसा चाहिए था, और जो मतलब मैं बीच में थोड़ा एरो की तरफ ध्यान जा रहा था, तो उसे मतलब खुद में आई वापस, उस खुद को बोला कॉन्फिडेंट शूट करो, और यही टाइम है मतलब शूट करने का। और पूरा शूटिंग, आज पूरा जो दिन का शूटिंग पूरा एंजॉय किया है, मस्त लगा शूट करके, एक एक शॉट बढ़िया चला है।
0: जब तुम फाइनल खेलते हो कुमकुम, अपने आप को क्या बोलते हो? खुद के साथ तो कॉन्वर्सेशंस करते रहते हो, और बाकियों के साथ भी तुम बहुत कॉन्वर्सेशन करते हो, मैंने देखा है. क्या बोलते हो तुम अपने आप को?
1: खुद को यही बोलते रहती हूँ, बी कॉन्फिडेंट, मतलब भरोसा रख खुद पे, मार सकती है, और जो खुद के की पॉइंट है उस पे ध्यान देती हूँ, ब्रीथिंग पे ध्यान देती हूँ, यही करती
0: तो आर्चरी
1: हूँ।
0: कहाँ से शुरू हुई कुमकुम? किसने तुम्हें आर्चरी में यहाँ पर आर्चरी के फील्ड में लाया, और कैसे शुरू किया तुमने, बताओ?
1: आर्चरी मैंने 2018 में शुरू किया था, मुझे मम्मी ने बोला था ज्वाइन करने के लिए, ऐसा कुछ खास रीजन नहीं था, पर बोला था कि एक स्पोर्ट्स खेल मतलब खेलते हैं, और खेल मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। मम्मी ने ज्वाइन करवाया, फिर गई, 6 महीने में नेशनल का मेडल आ गया, फिर उसके बाद इंटरेस्ट आने लगा।
0: बिल्कुल. और पापा मम्मी क्या करते हैं तुम्हारे?
1: पापा का बिजनेस है स्वीट बॉक्सेस का,
0: और
1: और
0: मम्मी,
1: मम्मी हाउस है।
0: अच्छा ये बताओ एक चीज, कि तुम्हारे टीम में ज्योति जैसे, ज्योति सुरेखा वेनम जैसे आर्चर है जिन्होंने बहुत टाइम से आर्चरी की है, और वो एक इंजीनियर है, एक एमबीए है, तो ज्योति दीदी के तरह तुम भी क्या साथ साथ पढ़ाई करना चाहती हो? बिकॉज यू आर वेरी यंग, जस्ट 17 years old.
1: हाँ, पढ़ाई तो करनी है अभी, अभी तो 12th की एग्जाम है जाके, मतलब अगले साल वो देनी है। और ज्योति दीदी बहुत मोटिवेशन है मतलब हमारे लिए, हमें इंस्पायर करती है वो, क्योंकि उनकी तरह मतलब वो इतनी काम है, उनको देख के हम खुद भी शांत हो जाते हैं।
0: तो पढ़ाई
1: मतलब
0: करने
1: उनको
0: के लिए
1: देख,
0: बोलती है? हाँ जी बोलो.
1: नहीं बोला नहीं अभी तो कुछ भी, पर उनको देख के मतलब लगता है कि ऐसे चाहिए, मतलब उनके पास सब कुछ है पर कभी ऐसे दिखाना नहीं, कुछ नहीं, बहुत मस्त।
0: बिल्कुल, तुम भी बहुत मस्त हो और ऐसे ही रहो, और बहुत सारे गोल्ड मेडल जीतते रहो. हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है. थैंक यू वेरी मच.
2: And that's all that we could pack in this edition. Time for us to slip into another quick short break. We don't go anywhere. We'll be right back.
3: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: 10 years is a long time in the life of a government. It is nothing at all in the life of a civilization. And yet in this last decade and a little more, the two have now started to move together in India in a way that probably hasn't for a very long time. A prime minister has renamed avenues. He's reinstalled a forgotten specter in parliament, rebuilt temple corridors, reopened a border crossing for Sikh pilgrims, and put a fixed date on history the republic had never formally marked. So what has Prime Minister Modi actually done to put India's civilizational unity back at the center of public life?
1: हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ देखें तो चाणक्य ने 400 साल पहले देश को एक करने के लिए भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई। चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत बने उसके लिए 125 करोड़ देशवासियों का सामूहिक पुरुषार्थ आवश्यक है।
2: G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है।
1: सांस्कृतिक राजधानी

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

से ढाई साल पहले हमारे दिमाग में आया कि इन दोनों जो म्यूज़िक के हमारे ये लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे स्टाइल्स हैं, रॉक स्टाइल है और देसी है, इनको अगर हम कंबाइन करें, डिवोशनल को भी तो रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, ताकि एक नया रूप, एक नया रंग आए।

0: But a new sound doesn't arrive with an audience attached.
1: कई इवेंट्स हमने ऐसे किए हैं जहाँ पे मुश्किल से हमें 10 लोग सुनने आए हैं. वो जो एक डेढ़ साल था वो लोगों को ये समझाने में हमें टाइम लगा कि हाँ डिवोशनल म्यूजिक इस तरीके से भी हो सकता है, ये म्यूजिक का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसे भी किया जा सकता है.

हमने उसमें डिवोशनल म्यूजिक में रॉक स्टाइल तो जोड़ा, लेकिन जो भजन की जो कहते हैं ना रूह है उसको ख़त्म नहीं किया, उसका जो फील है उसको वैसे का वैसे ही रखा, बस मॉडर्नाइज कर दिया।

0: 100% क्लब का एक्सपीरियंस था। आज हमने बहुत ज़्यादा मज़ा करा, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम लाइफ में अटेंड करा है।
1: एक्चुअली में सब बढ़ती था, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट था, एक्सपीरियंस इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, आने में इंटरेस्टिंग था, जेंजीज के साथ जुड़ने का नया तरीका है, इम्प्रेसिव, पूरा ओवरऑल इम्प्रेसिव।

0: सो नाइस. लाइक मैंने इससे पहले भी फ्रेशर्स अटेंड किया और उसकी जो म्यूज़िक होता है उसके बाद आपका सर बस करता है, कानों में दर्द होता है, बट आफ्टर भजन क्लबिंग इतना स्मूदी फील हो रहा है, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम फ्रेश हो जाता है ना मन, वो फ्रेशनेस आई है.
1: That evening, there was also seemingly an unexpected addition to the audience.
2: We were told that there might be some VIP movements right before the show, and we didn't know who exactly it could be, but we saw a lot of

0: मैं तो शॉक्ड हो गया था जब मैं सुन रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हम सारे दोस्त मिलके हमने वो फ़ोन से बनाया था, वी लव यू मोदी जी। तो ये बहुत प्यारा मोमेंट था हमारे लिए।
1: प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ वाइब कर रहे थे, एंड इट वाज यू नो वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, यू नो वेरी ग्लैमरस एनवायरनमेंट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्द्र मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: This is a world between orders, uncertain, unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Hello and welcome. Thanks very much for joining us on NDTV. I'm Padmaja Joshi and we are on the show where we talk pure politics. And as always, with us today saying politics Zindabad is Vinod Agnihotri, senior journalist. Also with us, Bhupen Chaubey, consulting editor, NDTV, assistant editor. Janendra Kumar joins us along with our managing editor, Akhilesh Sharma. And top of the show, of course, we're going to talk about the story of the raging showdown over the reported rupture within the Election Commission. Now, the opposition has made it absolutely clear that they are not going to give any quarter to the government on this issue. They've put out a protest calendar, and as a part of that, there were protests seen in the national capital today. There were protests in Mumbai as well. The CJP led from the front in Mumbai, and in Delhi, you saw protests which were carried out by the Aam Aadmi Party, by left parties. Even those parties which so far had parted ways with the India Alliance are now on the streets. What is their demand? Only one: resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in Delhi, despite the police having denied them permission. Aam Aadmi Party leaders and members of several student organizations, the DIFI, SFI, they all gathered at Jantar Mantar. Hundreds, including AAP leaders Atishi and Saurabh Bharadwaj and Sanjay Singh, all of them were detained and taken away. And in Mumbai, it is the Cockroach Janata Party which led a Jail Bharo Andolan at Shivaji Park. Even there, they have not been given permission. There is heavy police deployment, but they are not willing to stop. Now, the opposition has upped the ante and is raising concerns over SIR. In fact, in an all-party meeting that was held this week, the Congress even said that elections should now go back to the ballot. The Chief Election Commissioner should resign, and in fact, so should the Prime Minister and the Home Minister.
1: देश के प्रजातंत्र को बचाना है तो ज्ञानेश कुमार को हटाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन में सुधार करने पड़ेंगे, एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको रोल बैक करना पड़ेगा. यही एक सलूशन है और ये सरकार को मानना पड़ेगा.
2: The question is that the CEC has become a burden to the nation. In the sense that he is not understanding the gravity of the situation. Resign as early as possible and save the nation, save the youngsters. Because this will be continuing till his resignation.
3: बहुत दुख की बात है कि हर चीज के लिए हम सबको आंदोलन करना पड़ रहा है. आज 6 तारीख को हमारा बड़ा आंदोलन दिल्ली में है. हम साथ में ये वोट चोरी की जो चीज आ रही है उसके खिलाफ हम एक सशक्त लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत से संविधान बचाने के लड़ते रहेंगे.
4: अभी सारा पर्दाफाश हो चुका है. तीनों जो चुनाव आयुक्त है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब इनका जो फेक नरेटिव है वो बस्ट हो चुका है. फिर भी फेक नरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी.
0: ओके, लेट मी स्टार्ट विद अखिलेश जी. इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर गोइंग टू रिजाइन?
5: नो.
0: तो ये कब तक चलेगा?
5: मुझे लगता है जब तक चले, लेकिन सरकार का ये असेसमेंट है कि इसका ग्राउंड पे कोई रेजोनेंस नहीं है. अनलाइक इफ यू कंपेयर इट विद द नीट पेपर लीक इशू when they are demanding resignation of education minister Dharmendra Pradhan, that was actually resonating with the youth of the country, also with the unemployed. But on this issue they are saying that it does not have any resonance on the ground. They have seen it in Bihar, where first time the SIR was implemented in Bihar, and you recall Rahul Gandhi took out a yatra against that whole exercise. Despite that, NDA won by a thumping majority in Bihar. So they are saying that if opposition parties tries to make it, it may be for academic discussion and all, but as far as the voters are concerned, common men are concerned, it does not have any resonance on the ground. Second point, they are saying that as far as the issue is there, they acknowledge that the issue is there, of course, because there are differences among the three election commissioners, but they are saying it's mainly because of the ego tussle. What they call it, ego tussle, because all of them are at the seniority level, at the same level, they have the same experience in the administration, and they hold the same post. So now it's just a question of who is first among the equal. Mr. Gyanesh Kumar is first among the equal. He has taken certain decisions, but of course they acknowledge that yes, there were differences of opinion. That's why these protests were registered. But now a course correction has been made by the Election Commission.
0: Okay, so that has addressed the issue. So Vinod ji, kya ek tarike se chink in the armor ye bhi tha ki jab all party meeting hui, then key parties were not present. Aam Aadmi Party wasn't there, Akhilesh Yadav himself wasn't present there, DMK had boycotted it as well. So government ko lag raha hai ki bhai unke paas wriggle room hai, itna zyada resonance nahi hone wala hai, opposition khud united nahi hai.
6: Nahi, this was the meeting of the India Alliance, not all opposition meeting. Aur DMK or Aam Aadmi Party, they are not the part of the India Alliance.
0: No, but DMK was a part of the
6: India Alliance. Was. Even Aam Aadmi Party was the part. Ab to nahi hai na. Na unko bulaya gaya, na wo aaye. Akhilesh ji ka zarur hai ki wo bade Congress ke aur Mamta ji ke baad agar sabse active aur India Alliance mein koi hai to Akhilesh ji hai. Ab wo nahi aaye us din Ram Gopal ji ka aur Nathwani साहब का जो है वो धन्ना जी का नॉमिनेशन करा रहे थे उसी टाइम में, और उसी टाइम में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी हुई, तो वो आ सकते थे. अच्छा, उन्होंने भेजा भी, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, लेकिन जैसे अखिलेश जी हों या रामगोपाल जी हों या डिम्पल हों, इन तीनों में से कोई होता,
0: उनको ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसा अखिलेश जी कहते कि इसका कुछ खास नहीं तो क्यों.
6: वो उनका वो मैसेजिंग यूपी को लेके है. वो जो रायबरेली से, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि रायबरेली से यात्रा शुरू करना, उनका सीधा सीधा ये है कि उनका फोकस यूपी है. वो इस इशू को ज्वाइन भी करे रहेंगे लेकिन इसमें लीड नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इसमें फंस जाएं और डाइवर्ट हो जाएं उनके सारे यूपी के इश्यूज, जो गलती तेजस्वी से हो गई थी बिहार में.
7: तो राइट. और उन्हें पंजा जी, मुझे बताया गया कि TMC के एक सोर्स ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी ने अखिलेश यादव से कुछ अपने कंसर्न साझा किए जो पश्चिम बंगाल में उनके मुताबिक हुए चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से जो TMC आरोप लगाती है. तो सोर्सेज ने बताया कि अखिलेश यादव ने अभिषेक बैनर्जी को कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, यूपी में ज़्यादा वोट बीजेपी के कटे हैं. तो ये सुनकर के अभिषेक बैनर्जी को हैरानी हुई कि हम तो इनके प्रति चिंता जता रहे, ये निश्चिंत हैं. तो एक ये भी कॉन्टेक्स्ट है. और जो मीटिंग में अखिलेश यादव का ना आना था, मुझे बताया गया कि अखिलेश यादव ने ये मैसेज कन्वे किया था कि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, इसके बाद में मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूं. वो एक वर्चुअल जुड़ने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी थी उनके एंड पर, लेकिन फिर उन्हें ये बताया गया कि नहीं, हम मीटिंग ही 2 बजे तक ख़त्म कर रहे हैं, 2 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. तो कोशिश थी अखिलेश यादव की कि विंडो निकाला जाए, लेकिन फिर वो हो नहीं सका.
0: यू नो, यू टॉक अबाउट द विंडो, बट ओम प्रकाश राजभर, ही टुक अ स्वाइप एंड ही सेड कि भाई नॉमिनेशन तो 6 तारीख तक चल रहा है, अगर नॉमिनेशन ही कराना था तो आप 6 तारीख पे कभी भी करा सकते हो. यहाँ तो कोई क्या जरूरत थी भूपेंद्र,
5: यहाँ तो कोई मुहूर्त का भी चक्कर नहीं है. ये तो मुहूर्त भी नहीं मानते हैं ना, उसमें क्या है, तो कुछ भी किसी भी दिन निकल लेते
0: हैं.
8: व्हेन यू आर डीलिंग विद समवन लाइक अ धनराज नथवानी, एज द नेम सजेस्ट्स, धनराज, राइट, देन एवरीथिंग एल्स पेल्स इनटू इनसिग्निफिकेंस. I think the optics of that move is something which we can look at closely. But I think the initial question which you raised, which was about the election commission, I think the damage that had to be inflicted on the government and on the sanctity of the election commission has already been inflicted. In fact, I would go to the extent of saying that the chief election commissioner himself, if you look at today's reportage which has come out in the same publication, if chief electoral officers across the country are being told today that please go back to all those voters whose names have been deleted from SIR and give them another chance and re-enroll them and take all kinds of precautions. Well, hello, you should have thought of all this earlier, not when the cart is already bolted. Elections are done, dusted in many states. What recourse do those voters have? So I think to that extent, the chief election commissioner and the government would like to believe that with this, what Akhilesh says is course correction. Should it end with course correction? Should there be no further accountability?
0: No, but we are talking about pure politics over here. Yeah. Look, the CEC's image may be dented, but is there going to be a political dent to the government is my question.
6: I'll give you
0: because look, the political debate is today, the Congress is saying the PM must step down.
8: I'll give you a brutally honest answer, Padmaja. In our country,
6: brutally political and honest.
8: Brutally honest answer. Padmaja, in our country, look, saving democracy was never a sexy subject. It does not get converted into that kind of chutzpah as a corruption scandal may, or as a personal impropriety case may. But I think this time around what we have seen, that a large chunk of the saving democracy, at least on social media, Instagram, if all government ministers and all BJP leaders have been told that please, raise your profile on Instagram. Well, where is the biggest buzz which is coming up against the chief election commissioner? All on Instagram. Now the question is that is that Instagram buzz going to convert itself into votes or not? Well, we have to wait.
0: Well, the
8: and
0: biggest
8: see.
0: Instagram buzz as of today is about Captain Smit Machar more than anything else, more than what is happening at Jantar Mantar or what is happening at Azad Maidan or Shivaji Park. Yeah. It is about Smit Machar. But what this has done is bring all of the opposition together. And a very interesting take on this was given by Adhir Ranjan Chaudhary, because remember when we saw that image of Mamata Banerjee and Sonia Gandhi side by side at the all party meeting, comes this statement from Adhir Ranjan Chaudhary. Let's listen in.
9: समय आ गए हैं, पुराने दिन को भूल जाओ, नए सिरे से करो, क्योंकि हिंदुस्तान की संविधान, लोकतंत्र सब कुछ खतरे में है, सब हम मानते हैं। इसी के साथ साथ मैं भी एक सलाह देते हैं ममता बनर्जी को, और मांग भी करते हैं हमारे हाईकमान से भी कि क्यों ना ममता बनर्जी सीधे कांग्रेस में शामिल हो जाए, इधर उधर की बात ना करते हुए उनकी पार्टी के जितने एमपी है, जितने एमएलए है अभी जो बचे हुए हैं, सबको लेकर क्यों ना कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए।
0: एवरीवन वांट्स टू जॉइन INDIA, अधीर रंजन चौधरी इज सेइंग ममता बनर्जी शुड मर्ज हर पार्टी, रिजू दत्ता ऑफ द डेमोक्रेटिक टीएमसी इज सेइंग दैट वी आर विलिंग टू जॉइन INDIA, असदुद्दीन ओवैसी इज सेइंग वी आर आल्सो विलिंग टू जॉइन, बट ऑल ऑफ दिस असाइड कुछ सच में ऐसा होने वाला है, कुछ मर्जर वर्जर बहुत टाइम से ये कहा जा रहा है, कभी की एनसीपी मर्ज हो जाएगी एनसीपी शरद पवार, कभी टीएमसी मर्ज हो जाएगी।
6: जहां तक मेरी जानकारी है 2019 में इलेक्शंस के बाद एक बड़ी सीरियस कोशिश राहुल गांधी ने की थी शरद पवार से मिलके टू बिगिन विद एनसीपी, कि एनसीपी का पहले मर्जर हो और एनसीपी का मर्जर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर हम इसको और एक्सटेंड करें जगन रेड्डी एंड ये सब साथ, लेकिन वो बात बनी नहीं। एनसीपी की तरफ से भी उस पर रिजेंटमेंट था कि नहीं नहीं हमको अपनी अलग एंटिटी नहीं ख़त्म करनी, और कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के लीडर्स थे उन्होंने भी इसको अपोज किया इस मूव को। उसके बाद अभी 4 जून के बाद बहुत तेजी हुआ कि TMC मर्ज कर दे, उसको अपने MPs बचाने हैं तो एक ही रास्ता है कांग्रेस तुरंत मर्ज कर दे, 129 हो जाएंगे तो। और वो सोनिया गांधी और ममता की जो मीटिंग हुई उसमें भी कहा जाता है कि ये बात उठी और ममता को ऑफर भी किया गया वाइस प्रेसिडेंटशिप, ये सोर्सेस से मतलब कोई ऑफिशियल नहीं था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ।

0: प्रॉब्लम क्या है कि जिसने एक बार अपना इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं सत्ता का सुख ले लिया कंट्रोल, वो कैसे मर्ज करे अपने को किसी दूसरी आइडेंटिटी में। ममता बनर्जी आज चाहे वो उनके पार्टी के पास 5-6 MPs बचे हों, 20-25 MLAs बचे हों, लेकिन वो हैं तो उनके।
1: होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन हार्ट, बट उस मीटिंग की बात हो रही है, आई वांट टू क्विकली चेक विद जयनेंद्र आल्सो, बिकॉज़ उसमें मीटिंग में हुआ क्या क्या उसको लेके बहुत बात है कि नीतीश जी को गद्दार बोला गया, JDU रिएक्टेड वेरी वायलेंटली टू दैट, द फैक्ट अपेरेंटली राहुल गांधी टोल्ड द कांग्रेसमैन कि मोदी जी को भरोसा है कि हम सत्ता में आने वाले, मेरे खुद के पार्टी के लोगों को भरोसा नहीं है जयनेंद्र।
2: बिल्कुल, देखिए
1: दो मिनट, पार्टी के लोग जो कि राहुल गांधी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं ऐसे।
2: देखिए एग्जैक्टली दो मीटिंग्स हुई हैं, एक तो CWC की मीटिंग हुई है और दूसरी इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है। जो आपने पूछा अखिलेश जी से कि क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे, अखिलेश जी ने सीधा कहा नहीं, क्योंकि सरकार को नहीं लगता है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। खुद राहुल गांधी को भी नहीं लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि तभी उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, लेकिन 80% लोग अब ये मानने लगे हैं, ये जो पूरा वोट चोरी का, उनके हिसाब से जो वोट चोरी का मुद्दा है। उन्होंने खुद कहा कि पहले 20% लोग मानते थे शुरू में, अब 80% लोग मान रहे हैं, आप लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने एक बार मुझसे कहा था कि जब हम जाएंगे तो आप ही आएंगे, मतलब वो एक शायद CBI हेड के सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी या CEC के ही सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट या फिर CBI हेड के अपॉइंटमेंट।
1: उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई सरकार के अंदर के लोग हमें इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं,
2: वो तो खुलेआम कह रहे हैं। वो
1: तो अरविंद केजरीवाल भी कहते थे कि रॉ के लोग उनको इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं।
2: देखिए ये तो अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं, जो एक हम कह सकते हैं परसेप्शन बैटल जीतने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में
1: राहुल गांधी को अब सीरियसली लगता है कि मोदी सरकार वीक हो गई है?
2: हाँ देखिए, ये तो मंच से भी और पार्टी के अंदर की मीटिंग्स में भी, वर्किंग कमेटी के मीटिंग में भी और इंडिया अलायंस के मीटिंग में भी पंजा उन्होंने कहा कि PM हिले हुए हैं और ये समय है, हम सबको एकजुट होकर के काम करना चाहिए। CWC में भी उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं मानते, आप सबको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, वक्त आ गया।
1: पर अगर PM हिले हुए तो फिर CEC का इस्तीफा ले लेते ना।
2: हाँ वो ठीक, और मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस में एक
3: हिले हैं, पूरे हैं, लेकिन उतना नहीं हिले हैं वो।
1: एक धक्का और दो टाइप का अभी सिचुएशन
3: हिले हैं कि जो आप प्रोटेस्ट आजकल देखती हैं, जो शब्दावली आप देखती हैं, जिस प्रकार की भाषा आप देखती हैं, ये सब, आई मीन वी हैव नॉट सीन ऑल दिस अगेंस्ट मोदी, राइट? आई मीन मोदी वॉज बिगर देन द BJP, नाउ द वे वेदर इट्स लीडर्स you know are coming out openly challenging him, at the last that we saw something like this was when the Rafale deal was at its peak, and then of course 2019 happened and we all saw what happened. I think the only thing that has changed, I don't think that Modi is not in control of the situation, if that is what you're trying to ask. Modi is certainly in control of the situation. The only thing that has changed is that the opposition is consistently getting hold of newer hooks to target the Prime Minister directly, which they were not in a position to do so earlier. That's a fundamental.
1: And doing it more aggressively. Let's shift focus now to what is happening in Punjab, because the chief of the Congress in this state, Amrinder Raja Waring, has stepped down. By the way, the official announcement wasn't made, but he changed his Twitter bio to former president, former PPCC president on his own. And this has happened just months ahead of the assembly election in the state. Now, the key question remains, who will replace Waring at a time when the campaign heat has started to rise in the state? The party will have to strike a balance now, not just between the various camps within the Congress in Punjab, but also the various social groups in the state. While Waring came to Delhi to meet Rahul Gandhi, the BJP naturally is not losing this opportunity to take a swipe at the infighting.
4: Formally resignation diya, aur unhone bahut प्यार दिया और पंजाब के बारे में क्या हालात हैं और किस प्रकार से क्या हो रहा है और क्या हमें करना चाहिए, ये राहुल जी ने जानकारी ली।
5: और राजे पटिंग तो इस्तीफा ले लिया कल, हुण कोई नवा आऊगा ओदे पिछे लड़न के भी इहनू लाउणा है। कांग्रेस वाले पंजाब वास्ते कदे कट्ठे नहीं हो सकते, हाँ आपदे प्रधान नू लाउण वास्ते सारे कट्ठे हो जांदे ने, वी सारे कट्ठे हैं जी।
1: ओके, सो लेट मी आस्क जयनेंद्र, बिकॉज ही स्पोकन टू Waring एट लेंथ, हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट? फर्स्ट टेल अस, व्हाई डिड ही गो, व्हाई वाज ही रिमूव्ड?
2: देखिए पंजा, ये उन्हें उनका जाना जून में ही डिसाइडेड हो गया था, जब चन्नी बाजवा और सारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो दिल्ली में उन्होंने कन्वे किया कि हम राजा की लीडरशिप में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद अजय माकन की कमेटी बनाई गई, हालांकि उस कमेटी की रिपोर्ट ये थी कि चन्नी को हमें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि पिछली बार चन्नी को बनाने

0: होगा और इसके बाद स्थिति और हाथ से बिगड़ी, इतनी बिगड़ गई कि भूपेश बघेल जो अंपायर की भूमिका में थे, इंचार्ज थे, उनका विरोध होने लगा,
1: अंपायर को ही रेड कार्ड कर दिया
0: और एग्जैक्टली और फिर उनके
2: तो मर्सिडीज गाड़ी भी मिली गई थी।
1: कहा
2: ऐसी चर्चा थी कि भूपेश बघेल को वो जब पंजाब के जब वो इंचार्ज बनाए गए थे तो उनको संभवतः उन्हीं के जो जिन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिनको उन्होंने एम्पायर करना था शायद उन्हीं से उनको एक मर्सिडीज गाड़ी भी मिल गई थी। एंड दैट हैपेंस टू बी वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई his neutrality came under question.
1: But very interesting, I have to say that Bhupend almost 3 weeks ago had predicted that Waring is going to go as the chief of the Congress in Punjab. So now also tell us who's
2: sometimes we get it right.
1: who's going to become the new
2: so
1: chief?
2: The political logic that I have been given to understand is this, that the Congress high command believes that it's best if you make a Hindu face, a non-Sikh face, you make that Hindu face the Pradesh Congress president. The feeling is that if you have that logic, then who will be the chief minister should that situation arise, which is bound to be, let's say, a Sikh person? That question remains open. You create a mechanism much like what was tried in Kerala, where all your Lok Sabha faces are given the responsibility of campaigning. They're not asked to campaign, they're not asked to contest. So you know, Wadding is out of the race, Sukhinder Randhawa then is out of the race, all of whom are looking at themselves as potential, you know, chief ministerial candidates or people with who are in a position to control the levers. My own understanding is this, that I think none of these names that we're talking about, I spoke to Mr. Singla some time back and I was asking him if he had been sounded out and he was on the campaign trail. The sense I get by speaking to, from Mr. Bajwa to Mr. Randhawa to Mr. Singla, is that there is one more card which is still to play out. And that card is a potential return of Captain Amrinder Singh to the Congress party. Now, I'm not suggesting that Amrinder Singh is going to be the chief ministerial candidate, but the potential of Amrinder Singh coming back to the Congress party is very, very high. And once that happens, if that were to happen, maybe by the end of the year, I think this question that you're raising, that who will be the chief ministerial candidate, will get answered then.
1: And who will be the state president?
2: I think state president at this stage is a toss-up between Mr. Singla and Pargat Singh.
1: Okay.
2: His name, Pargat Singh's name has also been
3: pronounced. He's a jet Sikh and a former hockey captain, known in the entire Punjab. He's a pan-Punjab face. And the most important thing is that he's not in good baji. He's not with the Channi, neither with the Channi nor with the Raja.
1: क्योंकि विजय सिंगला से ये कहा जा रहा है कि आप एक हिंदू को बना दीजिए तो फिर एक जट सीख जो है आपके सीएम फेस हो जाएंगे, कैंपेन कमेटी के चीफ आपके ऑलरेडी
3: पंजाब में
1: जो कि दलित
3: पंजाब में अगर आप जट सीख को नहीं बनाएंगे तो आप अकालीज के लिए आप खुला मैदान छोड़ देंगे जट सीख वोट के लिए, नंबर एक। और दूसरा ये है कि आपने सुनील जाखड़ को तब बनाया था जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे और वो फेस थे पार्टी का, वो जाट सिख थे, इसलिए सुनील जाखड़ और सुनील जाखड़ ही हिमसेल्फ इज ए जाट और उनका कद भी बड़ा था। सिंगला इज ए अर्बन फेस, उसको पंजाब के गांव में एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, इसलिए बनाना तो इनको पड़ेगा जटी लॉजिकली, बाकी किसी को बनाने कांग्रेस पार्टी।
0: ऐड करना चाहता हूँ कि प्रगट सिंह वाकई में उन पोजिशनिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अकाली दल से आए हैं और कांग्रेस लीडरशिप के करीब नहीं है, उनके कम वकील हैं राहुल गांधी के आसपास, तो इस वजह से शायद उनकी दावेदारी और एक ये लॉजिक भी है कि जट सिख को हटाकर जट सिख को बनाने से आप गेम क्या करते हैं। तो ऐसे में सिंगला जिस एरिया से आते हैं,
1: खिलाफ गया क्या वरिंग के खिलाफ क्या फैक्टर गया?
0: मैं आपसे वही कह रहा था, वर्डिंग सब सीनियर लीडर्स के की जो के आंखों के कांटे बन गए थे, इनकी जो कार्यशैली थी वो इन सब लोगों को असहज कर रही थी।
1: तो हरी कोई कांटा बन जाता है ना, जब कैप्टन थे तो वो कांटा बने हुए थे, जब वरिंग थे वो कांटा बन गए, सिद्धू कांटा बन गए, कौन कांटा नहीं।
0: बुनियादी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो अकाली दल कल्चर है कि जो पिछला उम्मीदवार होता है पिछले चुनाव का वो हल्का इंचार्ज अकाली दल में बनाया जाता है, वो कल्चर सभी पार्टियों में है। तो कांग्रेस के भी जो पिछले चुनाव के हारे हुए उम्मीदवार थे वो अपने आप को अपने इलाके का अपने विधानसभा का इंचार्ज मान के चल रहे थे। जब राजा वर्डिंग प्रदेश अध्यक्ष बने वो यूथ कांग्रेस बैकग्राउंड से आए हुए, उनके अपने नेता हर इलाके में है, उन्होंने अपने करीबियों को बढ़ाना शुरू किया, उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाया। पुराने उम्मीदवारों को लगा कि शायद हमारी टिकट नहीं मिले, इसकी वजह से उन्होंने राजा के खिलाफ एक लॉबिंग शुरू की और फाइनली वो राजा का विकेट लेकर के माने।
1: बिकॉज़ यू नो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एज एन आउटसाइडर, व्हेन आई लुक एट राजा वड़िंग इन द लास्ट 5 years आफ्टर द आम आदमी पार्टी केम टू पावर, चरणजीत सिंह चन्नी वाजंट इवन देयर, ही वाजंट इवन इन पंजाब। आई रिमेंबर ही वेंट अवे टू राइट हिज पीएचडी और समथिंग,
3: ही वेंट अवे टू कनाडा
1: एंड देन ही रोट अ पेपर अपेरेंटली अबाउट हाउ द

0: ब्राह्मण को दिया जाए, नुमाइंदगी दी जाए, ओबीसी पे खास तौर से फोकस बीजेपी का रहे।
1: ब्राह्मण हरीश द्विवेदी तो
0: हरीश द्विवेदी तो ही है, और भी एक आध कोई और भी हो सकते हैं। कुमार विश्वास का जैसे आप नाम ले रहे हैं, वो भी ब्राह्मण चेहरा एक हो सकते हैं, पर उनका भी मुझे डाउटफुल है कुमार विश्वास का।
2: क्यों?
0: क्योंकि एक तो बाहर के हैं, पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। पार्टी को अगर देना हो तो अपने लोगों को देगी, कम से कम चुनाव जब सिर पर है तब। क्योंकि अगर आप कुमार विश्वास को देते हो तो बाकी जो ब्राह्मण दावेदार हैं पार्टी के भीतर
2: वो ज्यादा। प्लस ही आल्सो हैड क्रॉस पार्टी कनेक्शंस। हिज वाइफ वाज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द कमीशंस अंडर द अशोक गहलोत।
1: राजस्थान स्टेट सर्विस कमीशन,
2: स्टेट सर्विस कमीशन राजस्थान में, व्हेन अशोक गहलोत वाज द चीफ मिनिस्टर, हिज वाइफ वाज अ
1: मेंबर ऑफ दैट।
3: कुछ लोगों से मैंने श्रीकांत शर्मा के बारे में भी सुना,
0: मथुरा
3: के
0: जो एमएलए हैं, कई सारे नाम चल रहे
3: हैं।
2: बट श्रीकांत शर्मा इज ऑलरेडी एन एमएलए।
3: आई नो बट यू सी the so so, so you to then you to get into the dynamics of it. How did Srikant Sharma become the Mathura MLA? Whose allegiance has brought him this far? It was the home minister, right? Srikant Sharma was a cabinet minister, by the way, if you remember. Srikant Sharma and Siddharthnath Singh were Prayagraj MLA, were the two ministers. Both of them have been MLA since then. Now Srikant Sharma also wants to, he's been looking for an opportunity to come back to you know, to Delhi politics. His proximity to the home minister is well known. And I have been hearing his name in certain quarters.
2: Suresh Rana, Satyapal Singh, haan, both Western UP.
0: Serious hai, Suresh Rana, because if Rajput, if you want to bring him, then Suresh Rana can be. Rajbir Singh, because
1: to Suresh Rana can be.
0: कोशिश कर रहे हैं राजबीर, क्योंकि राजबीर चुनाव हार गए थे। अब कल्याण सिंह की लेगेसी तो बीजेपी को हमेशा चुनाव के पहले याद आती है, तो इसलिए बाबूजी के लिए भैया जो है राजू भैया वो उनका नाम चल रहा है। वैसे कई सारे नाम हैं,
2: और सत्यपाल सिंह आल्सो, बिकॉज़ आई थिंक ही वाज वेरी कट अप व्हेन द
0: डिनाइड टिकट।
1: एक वजह और
2: है व्हेन द अलायंस हैपेंड बिटवीन आरएलडी।
1: एक वजह और है राजवीर सिंह के पक्ष में कि अखिलेश इज आइंग फॉर लोधी बूट्स, और वो बीजेपी का ट्रेडिशनल बूट है जो लोध बूट। कल्याण सिंह सीन में नहीं है, राजू भैया चुनाव हार गए, तो अखिलेश जो रायबरेली यात्रा थी लोधी वर्सेस योगी जो नारा दिया था, तो बीजेपी इसलिए वो राजू भैया के पक्ष में बात जाती है।
0: एक्चुअली अखिलेश की जब बात करते हैं तो एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि अखिलेश यादव ने अपने जो कोर वोटर हैं मुस्लिम यादव, उनको ये कहा है, ऐसा सुनने में आया कि भाई आप लोगों को इस बार ज्यादा टिकट मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे ज्यादा टिकट किसको देना है, नॉन यादव ओबीसी को, ब्राह्मण्स को, नॉन जाटव दलित को, ताकि ये जो लोकसभा का फार्मूला था ना उसी फार्मूले को मैं असेंबली में रेप्लीकेट कर सकूं। भाई आपको बाद में सरकार बनेगी तो सरकार तो अपनी रहेगी ना, आपको बोर्ड में कॉर्पोरेशन में यहाँ एडजस्ट कर देंगे।
2: मतलब बेसिकली द चॉइस इज डू यू वांट टू बी हैव योर एमएलएज और डू यू वांट टू हैव योर चीफ मिनिस्टर।
0: एग्जैक्टली,
2: सो अखिलेश यादव नीड्स टू बी चीफ मिनिस्टर। ज्ञानेंद्र बताइए, जनेंद्र बताइए, कुछ अंदर की बात बताइए, क्या राज्यसभा में क्या नाम है और तीसरी टिकट किसको मिल रही है समाजवादी पार्टी से?
4: नहीं देखिए, इसके बारे में मैं कोई गेस वर्क नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नंबर्स हैं अखिलेश यादव के पास दो कांग्रेस का मिलाकर के, तो दो सीट तो आराम से निकलेगी। जो तीसरी सीट है उस पर टक्कर इसलिए है क्योंकि ज्यादा पीछे नहीं है ना, तो बीजेपी ज्यादा पीछे
1: लगे, बने रहेंगे।
4: हाँ, तो एक तो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है और दूसरे जो है वो विधायक दल के नेता बन रहे हैं। वो बड़ी यूनिक बात है, दो ही विधायक है कांग्रेस के और एक विधायक जो भी विधायक दल के नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष बन रही है, दूसरे विधायक विधायक दल के नेता बन रहे हैं, वो तो दोनों साथ ही रहेंगे। लेकिन ज्यादा पीछे भी अखिलेश और एक राजभर के कुछ एमएलए और आरएलडी के भी कुछ, आरएलडी और राजभर के कुछ जो एमएलए है वो एक्स एसपी हैं, तो हो सकता है उन पे नजर रखनी चाहिए कि क्या बीजेपी अपना कुनबा बरकरार रखती है आठवीं सीट पे या तीसरी सीट जो अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नहीं आया, बृजभूषण शरण सिंह का नाम भी चर्चा में है, क्या वो सरप्राइज एंट्री होंगे या फिर वो तीसरी सीट को लेकर के टक्कर होगी?
0: बृजभूषण शरण सिंह का तो मैं बता देता हूँ कि बात हुई उनकी एचएम से, होम मिनिस्टर से, और जो हमें इंडिकेशन मिला उनके सोर्सेस के जरिए वही कि वो पार्टी में रहेंगे। देखिए, उनका बेटा एक एमपी, एक बेटा उनका एमएलए ऑलरेडी है, उनकी इच्छा है जरूर है कि 2029 का लोकसभा चुनाव में लड़ूं, तो ये पार्टी को तब फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अभी राज्यसभा वो भी तीसरी सीट जिसमें कि मामला फंसा हो, मुझे लगता है कि बृजभूषण शरण सिंह
3: उसमें एक डायमेंशन और भी जोड़ दूं, उनकी बेटी है शालिनी सिंह जी, वो शूटर भी हैं, एथलीट भी हैं, वो उन्होंने खुद पूरे नोएडा में अपने पोस्टर सब जगह उन्होंने लगवा दिए हैं कि विधानसभा और वो उभरती सितारा हैं। सडनली मैं देख रहा हूँ कि उनकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं वो संघ के कार्यक्रम में जा रही हैं, कहीं पुस्तक विमोचन में जा रही हैं, कहीं कहीं जा रही हैं वो। व्हाट आई एम गेटिंग टू हियर इज दैट शी इज पुटिंग प्रेशर ऑन हर फादर। यू सी द सन इज एन एमपी, the other son is an MLA.
1: Yeah.
3: Shalini's husband comes from a JDU family. उनकी जो संधि हैं जो वो बिहार से हैं, आरा से एमएलसी रह चुकी हैं, वो एमपी रह चुकी हैं, सो इट्स अ बिग पॉलिटिकल कुनबा, वेयर इन दैट बिग पॉलिटिकल कुनबा द डॉटर ऑफ बृजभूषण शरण सिंह इज आल्सो आइंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ ऑन द बीजेपी टिकट
2: इन प्लेस ऑफ पंकज सिंह।
3: इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? सो शी इज आइडेंटिफाइड थ्री कंस्टिट्यूएंसीज, इधर जेवर और नोएडा और दादरी। अब इन तीनों

0: में से उनको अगर उनकी लॉटरी अगर लगती है मान लीजिए तो हो सकता है कि
1: जेवर और नोएडा बोथ हैव ठाकुर एमएलए,
0: वो ठाकुर एमएलए
2: और वो पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं और जेवर एमएलए धीरेन्द्र सिंह जो है वेरी क्लोज टू योगी जी.
1: या करेक्ट. And in fact, interesting story about Dhirendra Singh. He was the one who had taken Rahul Gandhi on a motorcycle when that entire Bhatta Parsol agitation had happened. But finally, let's talk about the bipoles that are going to happen in just a few days from now. You would argue it's just a bipole. What's the big deal? But believe me, these are high stakes bipoles. 5 seats, Nandigram, Reji Nagar in West Bengal, Madhurantakam and Dharmapuram in Tamil Nadu. Both of them are SC seats and 1 seat in Puducherry. The Nagaon Lok Sabha seat will also be voting after the resignation of Pradyut Bordoloi. Now, each seat has its own calculations, but for Shubhendu Adhikari and Joseph Vijay, it will be critical because it will be their first test after sweeping to a massive win. And imagine just how stakes it is, because the Congress candidate was jailed in a case that is almost 20 years old from the Nandigram agitation. He's finally got bail and here is what he said.
3: চণ্ডীপুরে এসেছি, একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলাম. চণ্ডীপুরে এসে আমাকে বলছে যে আপনি মিলন প্রধান. আমি কেন না চলুন, সিভিল ড্রেসে, সিভিল ড্রেসে এসে আমাকে নিয়ে জোর করে টেনে টেনে নিচে নামালো. নিচে নামিয়ে আমাকে ঘাড় ধরে একদম কোমর ধরে আমার প্যান্টটাও ফেটে এ হয়ে গেছে গাড়িতে তুললো. গাড়িতে তুলে আমাকে চট করে গাড়ি ছেড়ে দিল, মানে দেরি করলো না. ওখানে চোখ বেঁধে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না. আপনার কি চাই, কি দাবি দাবা বলুন, আপনি প্রত্যাহার করে নিন.
1: जरिंद बताइए, क्या सर्वे है, कौन सी सीट कौन जीतने वाला है, दो बंगाल की सीटों पर बताइए.
0: देखिए, मेरा तो इंटरेस्ट ये है कि जो टीएमसी के दो फाड़ हो चुके हैं, एक टीएमसी ममता और एक डेमोक्रेटिक टीएमसी, इन दोनों में कौन आगे रहता है रेजीनगर सीट पे, वो देखने वाली बात होगी. अदरवाइज तो जो रेजीनगर सीट है वहाँ बीजेपी का जीतना मुश्किल है. वो एक मुस्लिम बहुल सीट है और मुख्य मुकाबला हुमायूं कबीर के बेटे और उनके साथ किसका मुकाबला होता है ये देखने वाली बात होगी कि टीएमसी के दोनों फैक्शन में से कौन या फिर कांग्रेस. नंदीग्राम जो सीट है मुख्यमंत्री की सीट है, तो वहाँ और जिस तरीके से वहाँ टीएमसी के कैंडिडेट पीछे हट गए, कांग्रेस का कैंडिडेट इतना नया है, बल्कि कांग्रेस पिछले 20-25 सालों से वहाँ नहीं लड़ी है, तो वहाँ पे ज़्यादा कंटेस्ट है नहीं बंगाल में. हाँ, एक यूनिक बात ज़रूर हुई है कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस को कह रही थी कि हम एक एक सीट अलायंस में लड़ लेते हैं, नंदीग्राम आप लड़ लीजिए, मैं रेजीनगर लड़ लेती हूँ. कांग्रेस उसके लिए रेडी नहीं हुई, लेकिन फिर एक स्क्रिप्ट आगे इस तरीके का ट्विस्ट हुआ कि टीएमसी का कैंडिडेट बैठ गया, तो अब टीएमसी वहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है.
1: और कांग्रेस का सर्वे तमिलनाडु के बारे में क्या है?
0: कांग्रेस का सर्वे तमिलनाडु के बारे में होपफुल यही है कि विजय जो है उनका जो जादू है वो बरकरार है.
4: इनकम्बेंट पार्टी विच इज जस्ट कम टू पावर एंड द स्टार पावर ऑफ विजय, ऑफ कोर्स आई मीन द बाइपोल बीइंग नेसेसिटेटेड बिकॉज द पर्सन हु वन ऑन एआईएडीएमके टिकट हैज स्विच साइड्स, तो थोड़ा सा वो फैक्टर है, बट आई डोंट सी दैट टू बी अ प्रॉब्लम. इन वेस्ट बंगाल नंदीग्राम आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर फॉर हर व्हाट मिस्टर हसी रानी रात. Who is the mother of
1: Shubhendu Adhikari's personal assistant?
4: On the other seat in Reginagar, you know, I mean, what I'm just looking at all the Muslim candidates: Mamta TMC, Rabiul Alam Chaudhary, Rebel TMC, again a Muslim candidate, Congress a Muslim
1: five
4: candidate,
1: Muslim candidates CPM and one Hindu from candidate. The BJP.
4: So yeah, so you know, I mean, BJP should be sitting comfortably, I feel.
1: BJP sitting comfortable in Reginagar? 65% Muslim population.
5: But BJP will manage, I think, because Shubhendu Adhikari, you know, his aggressive
4: style. He's in power. You see, in any bipole, Padmaja, you know, when you're in the state, the scale is always tilted in your favor. And with five Muslim candidates cutting into each other's votes, I think it should be
2: comfortable.
1: हनीमून पीरियड इज स्टिल अप फॉर बोथ ऑफ दीज चीफ मिनिस्टर्स, बट द मैसेज दैट यू विल सी कमिंग फ्रॉम दीज बाइपोल रिजल्ट्स एंड फ्रॉम द राज्यसभा रिजल्ट्स, अक्टूबर 6 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल डेट बिकॉज द लास्ट डेट ऑफ आई थिंक नॉमिनेशंस फॉर राज्यसभा इज अक्टूबर 6. अक्टूबर 6 इज ऑल्सो गोइंग टू सी अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट बाय द कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस एंड इट इज गोइंग टू सी दीज बाइपोल्स happening. So stay tuned to NDTV for the very latest. And of course, when that larger political message comes out, you will be right here with us saying, Politics Zindabad. Thanks for watching.

0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो लोन ऑप्शंस बिग सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग ब्रांच नेटवर्क बिग अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
2: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात
4: वाओ मामा क्या स्वाद है
3: अरे मेरे राजा
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला
0: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए एनी सजेशंस जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन स्मॉल
1: अब पूरी पिक्चर देख लो
6: लोन ऑप्शंस बिग
7: सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग Branch network? Big!
1: अगर small होता, तो मैं साथ में होता. और जीवन, nothing small about us.

0: Minister is perhaps the clearest window into what was going through Captain's mind.
1: उस मोमेंट पे सर, मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था। मैं नीचे गिरा हुआ था, तब मुझे ऐसा सो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है, और मुझे बिल्कुल पता था कि ये एक लास्ट पुश होगा स्मिथ कर दे, दरवाजा बस वही है, और तभी भी मैं मार खा ही रहा था।
0: For his family, however, the last few days have been less about heroism and more about survival. Machar's father, Bhupendra Machar, told NDTV that the family's first reaction when they heard about the incident was fear. His son was injured. The family prayed for his safety. His father said that Smith's overriding thought during the crisis was that no passenger should lose their life.
2: के मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था।
0: एंड देन देयर इज द अदर साइड ऑफ स्मिथ्स लाइफ। हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन आर इन दुबई व्हाइल हिज पेरेंट्स आर इन मुंबई। हिज फादर डिस्क्राइब्ड फ्लाइंग एज सेंट्रल टू हिज सन्स लाइफ, saying that Smith is deeply committed to his profession. For millions, Captain Smith Machar is now the face of a remarkable aviation survival story. For his former colleagues, he is the senior pilot they knew as calm and knowledgeable. For his childhood friends, he is the boy they grew up with. For his parents, he is simply their son. And for the passengers aboard flight FZ1073, he is the captain who, even after being seriously injured, kept fighting to get that cockpit door open. Today, Smith Machar is recovering in an Abu Dhabi hospital. The investigation into exactly what happened inside that cockpit continues. But the story of the pilot himself is already much bigger than the incident that made him famous.
3: Well, at 35,000 feet, inside the cramped, locked confines of a cockpit, there is no escape. There is perhaps no calling for backup. There is only training, there's instinct, and raw human grit. Captain Machar fought off the attacker, wrestled control of the aircraft, and brought 174 passengers safely down to earth. Listen in to what his father, Bhupendra Machar, told us on NDTV. His first reaction wasn't pride, it was pure parental fear. He rushed to a temple, lit a lamp and prayed that no bad news should come.
4: Bhupendra Bhai Machar, he is the father of hero pilot Smith Machar, whose son has made the entire country proud and is now a global icon of courage. Bhupendra Bhai, NDTV par aapka swagat hai. आपके बेटे पर पूरा देश का गर्व है, क्या आप बता सकते हैं भूपेंद्र भाई, स्मिथ अभी कैसा है, उनकी तबीयत कैसी है, उनकी अभी जो वीडियो सामने आया है प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करते हुए साफ नज़र दिखाई देता है कि वो ठीक है, आप एक अपडेट दीजिए कि वो कैसे हैं, आपका बेटा कैसा है अभी भूपेंद्र भाई?
2: जैसा आपने देखा वीडियो में वही चीज मैंने भी देखी है आज, क्योंकि मैं आज उनको कल में मिला था 10 मिनट के लिए, तभी वो थोड़ा पूरे कंट्रोल में नहीं था, थोड़ी सी बात करके फिर डॉक्टरों ने भी बोला कि आज अपलिफ्ट हुआ है, तो अपन शांति से बात करें तो बेटर है। तो आज हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, थोड़े टाइम में हम ऑन द वे ही है, और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए, मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है, तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है।
4: स्मिथ ने आपको क्या बताया जब आप मिले उनसे भूपेंद्र भाई, आपको क्या बताया कल?
2: एक्चुअली कल हम लोग ने एक बात रखी थी कि इस इंसिडेंट के बारे में आज कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि वो अभी भी उतने ही वो फेज में था, तो मैंने सोचा कि आज स्मिथ अपन एक खाली भगवान की बहुत मेहरबानी समझ के आज हम लोग गले मिलते हैं, कोई उसकी बात नहीं करेंगे, आज बहुत सब लोग खुश होकर बात कर 10 मिनट बैठेंगे हम लोग तेरे साथ। तो कल की हमारी कोई भी बात में हमने उसको कोई वो चीज को याद नहीं दिलाया, मतलब वो बात ही मत छेड़ना, अभी अपन शांति से कल बात करेंगे।
4: भूपेंद्र भाई, स्मिथ के जख्म कितना सीरियस हैं,

0: इन तस्वीरों में दिखाई देता है कि वो हॉस्पिटल में है, वो ट्रीटमेंट जारी है। डॉक्टर्स का क्या कहना है भूपेंद्र भाई?
1: डॉक्टर्स ने बोला है कि समय लगेगा ये जख्म को क्लियर करने में, और सर पे भी लगा है, दोनों हाथ से भी लगा है, और सर पे कुछ ऑपरेट भी हुआ है, स्टिचेस भी आए हैं काफी। तो अभी एकदम डिटेल में मैं आज नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जख्म है और शायद अच्छा टाइम जाएगा इसको क्लियर होने में।
0: भूपेंद्र भाई, आप स्मित के पिताजी हैं, आप और स्मित के माँ, क्या महसूस हुआ जब आपने सुना कि ये हादसा हुआ था आपके बेटे के साथ? आपका क्या रिएक्शन था, क्या महसूस किया आपने?
1: जैसे जैसे हर माँ बाप का होवे, सबसे पहले एक ही विचार खराब आ जाता है, और तुरंत हमने हमारे भगवान के पास दिया किया और बोला, भगवान कुछ भी हो जावे, खराब न्यूज नहीं आना चाहिए, आप बचा लेंगे।
0: लेकिन आप में विश्वास था कि आपका बेटा स्मित ऐसे करेगा, ऐसे ही बहादुरी दिखाएगा इस हादसे में? आप में विश्वास था?
1: देखो देखो, ये इस चीज की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसे आप भी वो चीज समझते हो, लेकिन एक ऊपर वाले की मेहरबानी रहेगी, कोई शक्ति उसके साथ आ गई और उसने ये जो प्रॉब्लम आया उसको सॉल्व किया, अपना पूरा सबके लिए गर्व की बात हो गई। और मैं भी बोलूंगा कि इसमें ज्यादातर भगवान की मेहरबानी है, हम लोग ज्यादा धर्मिष्ठ थे पूरे घर वाले
0: जी। और भूपेंद्र भाई, आपकी बेटे की बहादुरी भी थी, आपने डिटेल में देखा है कि उन्होंने क्या किया कॉकपिट में, हमला के बाद उन्होंने जख्मी होते हुए कॉकपिट के दरवाज़ा को खुला रखा, डिटेल में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपको पता है कि क्या हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, जैसे आपने बताया कि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं होता है सर।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसका एक शब्द बोल दूं मैं, के जैसे वो गिर गया जैसे नीचे कॉकपिट में, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अभी जो करना है वो अभी कर ले, अदरवाइज कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसके मन में एक विचार आया कि अभी फाइट करना ही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है दूसरा, और उसने एक्शन लिया और सक्सेस हो गया। और उसके मन में एक बात पक्की थी कि मेरे हिसाब से पीछे के जितने भी पैसेंजर थे वो किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, वो उसके मन में पूरा भरा हुआ था। तो उस चीज ने ऊपर वाले ने सपोर्ट किया और ये पूरा सक्सेस हो गई बात।
0: भूपेंद्र भाई, क्या स्मित हमेशा ऐसे ही थे, सेल्फलेस, औरों के लिए ऐसे बिहेव करना उनका ट्रेनिंग था एक पायलट के हिसाब से, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग वो कभी भी ऐसे ही थे?
1: एक्चुअली बोलूं तो वो आज समझो 17 साल से फ्लाइंग कर रहा है, और इस 17 साल के अंदर उसने सैकड़ों पायलटों को किस तरीके से इंटरव्यू देना है, किस तरीके से अपने को ये चीज समझना चाहिए, वो उसके पहले से नेचर में है, वो फ्लाइंग के बारे में एकदम से उसका मतलब, वो वाइफ है उसकी ऐसा समझ लो
0: जी,
1: उसको फ्लाइंग मतलब और कुछ समझता ही नहीं, बोलता मेरे को ज्यादा अच्छे से अच्छा फ्लाइंग करना है।
0: और जब वो ठीक हो जाएंगे भूपेंद्र भाई, क्या वो फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे? फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे
1: वो ना बोलेगा ही नहीं कभी भी कि मैं नहीं करूंगा ऐसा।
0: और
1: मैं भी चाहूंगा कि वो करे, क्यों नहीं करेगा, करेगा।
0: क्या क्या आप उनके पिताजी हैं, आप कुछ एडवाइस दे रहे हैं उनको, आपने कुछ बताया उनको?
1: अभी आज से शुरू होएगा हमारी डिस्कशन जो भी है वो।
2: Well, Captain Smith Max, extraordinary actions aboard the Fly Dubai flight have triggered a growing chorus of calls to honor him. From national recognition to bravery awards, the demand is clear. The pilot who put the lives of his passengers ahead of his own should be formally recognized for his bravery and courage as well.
3: Captain Smith Machar, the hero, the man of the moment, and the savior of over 180 passengers, fought to keep them safe even as his own life was at grave risk. Today, that courage is being remembered and a nation is asking for it to be honored. From the Ashok Chakra to the Bharat Ratna and national bravery honors, calls are growing to recognize the hero pilot who put his passengers' lives ahead of his own.
4: No, we need it for you.
3: The Federation of Indian Pilots has written to the PMO. seeking a National Bravery Award for Captain Smith. The pilot's body says Smith showed extraordinary courage, putting the safety of passengers and crew above his own personal safety. And the call for honor is growing louder. Rajya Sabha MP Milan Deora, former Uttarakhand Chief Minister Harish Rawat, author and lyricist Javed Akhtar, and Shefali Vaidya have publicly praised Smith's courage and called for him to be honored. But while the world salutes his courage, Smith continues his recovery fight. However, he remains stable and is responding well to treatment in Abu Dhabi. His family has also been allowed to meet him at the military hospital.
1: मैं मिला था 10 मिनट के लिए और जितना आपने देखा नरेंद्र मोदी के साथ बात करते हुए मेरे को भी बहुत खुशी हुई कि आज वो अच्छे फेज में है और अच्छी बात कर रहा है तो भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है.
3: Seriously injured, yet he continued to respond to the emergency, helping bring the flight and its passengers to safety. A pilot who, in the moment of crisis, chose duty over fear. In fact, he went beyond his call of duty. And today, his courage has traveled far beyond the cockpit. From Prime Minister Narendra Modi to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, world leaders have publicly acknowledged Captain Smith's bravery. Today, the question is no longer just about what Captain Smith did in that cockpit. It is about how a nation and the world chooses to remember a pilot who put others' lives first. Bureau Report, NDTV.
2: On that note, we're slipping into a very short break. I'm right back. Lots more lined up for you here on NDTV.

0: कॉलिंग फ्रॉम स्टार हेल्थ, चिंता मत कीजिए, कैशलेस क्लेम अप्रूव हो गया है.
1: दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स, अनसर्टन, अनरिटन. एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
2: Maddie, I need to open a savings account.
3: Arey, Ujjivan Small Finance Bank ma kholo.
2: Small bank?
3: Small. Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account business, Maxima business, Privilege, RDF. There's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात.
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है.
4: अरे मेरे राजा.

0: Talking about our top story now, an update on Captain Smith Machar, the Indian pilot injured on board the Fly Dubai flight 2 days ago. Sources have told NDTV that Captain Smith's health condition is currently stable. However, a long recovery remains. This is because his injuries are serious. Remember, he suffered massive blood loss, deep cuts, and his hands are injured. Sources say that it'll be a long road to recovery for Captain Smith.
1: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह साहब हैं. कीर्ति साहब, एक इंडियन पायलट ने जिस तरीके से एक 174 लोगों की जान बचाई, भारत सरकार ने उससे संपर्क भी किया, अभी उनकी स्थिति क्या है?
2: जो मैंने अभी लास्ट देखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे, उसका वो क्लिप हम लोगों ने देखा था. वो बात भी कर रहे हैं, स्थिति में सुधार भी आ रहा है. हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना, वो जल्दी से जल्दी वहाँ से अपना उनकी हालत सही हो और अस्पताल से बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जितनी ब्रेवरी का, जितने साहस का, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है. उनको तो पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे भारतवासियों का भी सीना गर्व से फूला है कि एक आदमी के इस बहादुरी के इस काम से 174 निर्दोष यात्रियों की जान बची. ये एक बहुत साहसी, एक उनके तरफ से बहुत ही साहसी कदम था. लेकिन इसके साथ साथ ये जो विश्व में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, इसके ऊपर भी, इसके लिए भी, आतंकवाद को लेकर भी एक संदेश जाना चाहिए देश दुनिया में कि जितने भी हमारे पीस लविंग देश हैं, उनको सबको एक होकर इस दुनिया के इस बढ़ते हुए आतंकवाद से, इससे हम लोगों को एक साथ जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा.
3: देश अपने साथ है, देश के अपना जो अग्रणी लोग है वो भी अपने साथ है, विश्व के अग्रणी लोग भी अपने साथ में स्मिथ की जो बहादुरी की है उनके ऊपर गर्व कर रहे हैं. हमको भी अच्छा लग रहा है, नेता ने वो लोग ने सल्यूट किया, हम लोग भी सल्यूट कर रहे हैं कि भाई हमारा कुटुंब का आदमी ने इतना एक पूरा बड़ा काम करके दिखाया. हम लोग बहुत खुश थे उससे. जैसे दो तीन बार बात हुई वो लोग एकदम हैप्पी. पहले सब टेंशन में बात करने को भी राजी नहीं थे, बाद में कल जो बात किया तो एकदम खुश खुशलत में बात किया और जाके देखने के बाद सबको दिल को तसल्ली हो गई और वहाँ पे इलाज भी बरोबर चल रहा है, तो हिसाब से भी बहुत संतुष्ट है लोग. तो हम लोग को रखा वहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं, तो मैंने बताया कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल है और मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर 1-2 किलोमीटर जाएगा मेन गेट से तभी तो हॉस्पिटल अंदर आ जाए और एकदम बेटर से बेटर इलाज हो रहा है उनका.
4: ऐसी फीलिंग है कि जैसे अपने घर के बुजुर्ग, अपने दादाजी अपने से बात करते हो ना, ऐसा लगा. जिस तरह से इतने प्यार से बात करना, और मेरे भाई से बात की उन्होंने, उनकी पत्नी से बात की, स्मिथ की वाइफ से भी बात की और उनको एहसास दिलाया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और स्मिथ स्वस्थ होकर वापस आ जाएगा. और कल थोड़ी देर उन्होंने गुजराती में भी बात की उनसे, जय श्री कृष्ण बोला उनसे और अपनी हनुमान चालीसा की भी बात हुई. तो एक बहुत ही ऐसा, ये अवसर, मतलब ये मैं इसकी बयां नहीं कर सकता हूँ कैसे उसको बोला जाए. बहुत ही खुशी हुई. हमेशा रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ लगाते हैं. उसके डैडी भी हमेशा, उसका नित्य क्रम है कि वो हनुमान चालीसा करेंगे. जैसे हनुमान चालीसा पूरी हो जाएगी, लाइट बंद करके सो जाते हैं हम लोग. और आज भी स्मिथ जब भी हनुमान चालीसा चैंट करता है, अपने बेटे को गोदी में बिठाता है और वो हनुमान चालीसा चैंट करता है हमेशा.
5: I'm standing right outside the Zayed Military Hospital in Abu Dhabi, where Captain Smith, the pilot of Fly Dubai flight, in which he was attacked by his co-pilot, who is said to be of Omani origin, is undergoing the treatment. Just a short while back, the Crown Prince of Dubai had visited this hospital in Abu Dhabi, which is a high security hospital. He is undergoing the treatment here after being attacked by a co-pilot who is said to be of Omani origin. The details of the co-pilot who attacked the Indian pilot Captain Smith happens to be such that his father is of Omani origin, his mother is of Syrian origin, and this person was born and brought up here in UAE. The details are emerging that perhaps during his career in the past few years he had visited Syria. There are material, as per the Western media sources, suggest that some incriminating material suggesting that he was under indoctrination or he was radicalized, and perhaps that is why he attacked the co-pilot. The security agency sources within Israel claim that perhaps he wanted to crash the plane inside Israeli territory. As of now, the interrogation of that pilot is going on in UAE because the Saudi authorities had extradited him or sent him back to UAE. Both the pilots, Captain Smith, who is undergoing the treatment, as well as

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Fly Dubai co-pilot Hamam Al-Hamami wanted to crash the flight into Israel, according to officials. Reports say he had been flagged as a security risk after extremist material was found in 2024. He was grounded. Al-Hamami posted extremist content on social media. Captain Smith Machahar, injured in the Fly Dubai incident, is stable but faces a long recovery after suffering massive blood loss, deep cuts and serious hand injuries. Political heat rises in Tamil Nadu over DMK chief M.K. Stalin's remark targeting TDK candidate Satyabhama. Vijay releases a statement, says remarks made by Stalin were indecent. The probe into Sahil Wakode's death intensified, with cops questioning Professor Dula for nearly 8 hours. He denies any caste discrimination allegations, saying he followed institute guidelines. It's a landmark moment for Indian golf and the Indian Golf Premier League. Pranavi Urs scripts history at the Asian Games, becomes the first Indian woman to win individual golf gold. Pranavi speaks to NDTV, shares her success mantra. Indian men's hockey team defend gold at Asian Games 2026 finals against Malaysia. India's men's team advances to LA 2028 Olympics. And talking about our top story now, an update on Captain Smith Machar, the Indian pilot injured on board the Fly Dubai flight 2 days ago. Sources have told NDTV that Captain Smith's health condition is currently stable. However, a long recovery remains. This is because his injuries are serious. Remember, he suffered massive blood loss, deep cuts, and his hands are injured. Sources say that it'll be a long road to recovery for Captain Smith.
1: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह साहब हैं. कीर्ति साहब, एक इंडियन पायलट ने जिस तरीके से एक 174 लोगों की जान बचाई, भारत सरकार ने उससे संपर्क भी किया, अभी उनकी स्थिति क्या है?
2: जो मैंने अभी लास्ट देखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे, उसका वो क्लिप हम लोगों ने देखा था. वो बात भी कर रहे हैं, स्थिति में सुधार भी आ रहा है. हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना वो जल्दी से जल्दी वहाँ से अपना उनकी हालत सही हो और अस्पताल से बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जितनी ब्रेवरी का, जितने साहस का, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है. उनको तो पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे भारतवासियों का भी सीना गर्व से फूला है कि एक आदमी के इस बहादुरी के इस काम से 174 निर्दोष यात्रियों की जान बची. ये एक बहुत साहसी, एक उनके तरफ से बहुत ही साहसी कदम था. लेकिन इसके साथ साथ ये जो विश्व में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, इसके ऊपर भी, इसके लिए भी, आतंकवाद को लेकर भी एक संदेश जाना चाहिए देश दुनिया में, कि जितने भी हमारे पीस लविंग देश हैं, उनको सबको एक होकर इस दुनिया के इस बढ़ते हुए आतंकवाद से, इससे हम लोगों को एक साथ, जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा.
3: देश अपने साथ है, देश के अपना जो अग्रणी लोग है वो भी अपने साथ है, विश्व के अग्रणी लोग भी अपने साथ में स्मिथ की जो बहादुरी की है उनके ऊपर गर्व कर रहे हैं. हमको भी अच्छा लग रहा है. नेता ने, वो लोग ने सल्यूट किया, हम लोग को भी सल्यूट कर रहे हैं कि भाई हमारा कुटुंब का आदमी ने इतना एक पूरा बड़ा काम करके दिखाया. हम लोग बहुत खुश थे उससे. जैसे दो तीन बार बात हुई, वो लोग एकदम हैप्पी. पहले सब टेंशन में बात करने को भी राजी नहीं थे, बाद में कल जो बात किया तो एकदम खुश खुशलत में बात किया, और जाके देखने के बाद सबको दिल को तसल्ली हो गई. और वहाँ पे इलाज भी बरोबर चल रहा है, तो हिसाब से भी बहुत संतुष्ट है लोग. तो हम लोग को रखा वहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं, तो मैंने बताया कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल है, और मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर 1-2 किलोमीटर जाएगा मेन गेट से, तभी तो हॉस्पिटल अंदर आ जाए, और एकदम बेटर इससे बेटर इलाज हो रहा है उनका.
4: ऐसी फीलिंग है कि जैसे अपने घर के बुजुर्ग, अपने दादाजी अपने से बात करते हो ना, ऐसा लगा. जिस तरह से इतने प्यार से बात करना, और मेरे भाई से बात की उन्होंने, उनकी पत्नी से बात की, स्मिथ की वाइफ से भी बात की, और उनको एहसास दिलाया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और स्मिथ स्वस्थ होकर वापस आ जाएगा. और कल थोड़ी देर उन्होंने गुजराती में भी बात की उनसे, जय श्री कृष्ण बोला उनसे, और अपनी हनुमान चालीसा की भी बात हुई. तो एक बहुत ही ऐसा ये अवसर, मतलब ये मैं इसकी बयान नहीं कर सकता हूँ कैसे उसको बोला जाए, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। हमेशा रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ लगाते हैं, उसके डैडी भी हमेशा उसका नित्य क्रम है कि वो हनुमान चालीसा करेंगे, जैसे हनुमान चालीसा पूरी हो जाएगी लाइट बंद करके सो जाते हैं हम लोग। और आज भी स्मित जब भी हनुमान चालीसा चैंट करता है अपने बेटे को गोदी में बिठाता है और वो हनुमान चालीसा चैंट करता है हमेशा।
5: I'm standing right outside the Zayed Military Hospital in Abu Dhabi, where Captain Smith, the pilot of Fly Dubai flight, which was in which he was attacked by his co-pilot, who is said to be of Omani origin, is undergoing the treatment. Just a short while back, the Crown Prince of Dubai had visited this hospital in Abu Dhabi, which is a high security hospital. He is undergoing the treatment here after being attacked by a co-pilot who is said to be of Omani origin. The details of the co-pilot who attacked the Indian pilot Captain Smith happens to be such that his father is of Omani origin, his mother is of Syrian origin, and this person was born and brought up here in UAE. The details are emerging that perhaps during his career in the past few years he had visited Syria. There are material, as per the Western media sources, suggest that some incriminating material suggesting that he was under indoctrination or he was radicalized, and perhaps that is why he attacked the co-pilot. The security agency sources within Israel claim that perhaps he wanted to crash the plane inside Israeli territory. As of now, the interrogation of that pilot is going on in UAE because the Saudi authorities

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines. Fly Dubai co-pilot Hamam Al-Hamami wanted to crash the flight into Israel, according to officials. Reports say he had been flagged as a security risk after extremist material was found in 2024. He was grounded. Al-Hamami posted extremist content on social media. Captain Smith Machahar, injured in the Fly Dubai incident, is stable but faces a long recovery after suffering massive blood loss, deep cuts and serious hand injuries. Political heat rises in Tamil Nadu over DMK chief M.K. Stalin's remark targeting TDK candidate Satyabhama. Vijay releases a statement, says remarks made by Stalin were indecent. The probe into Sahil Wakode's death intensified, with cops questioning Professor Dula for nearly 8 hours. He denies any caste discrimination allegations, saying he followed institute guidelines. It's a landmark moment for Indian golf and the Indian Golf Premier League. Pranavius scripts history at the Asian Games, becomes the first Indian woman to win individual golf gold. Pranavi speaks to NDTV, shares her success mantra. Indian men's hockey team defend gold at Asian Games 2026 finals against Malaysia. India's men's team advances to LA 2028 Olympics. And talking about our top story now, an update on Captain Smith Machahar, the Indian pilot injured on board the Fly Dubai flight 2 days ago. Sources have told NDTV that Captain Smith's health condition is currently stable. However, a long recovery remains. This is because his injuries are serious. Remember, he suffered massive blood loss, deep cuts, and his hands are injured. Sources say that it'll be a long road to recovery for Captain Smith.
1: केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह साहब हैं. कीर्ति साहब, एक इंडियन पायलट ने जिस तरीके से एक 174 लोगों की जान बचाई, भारत सरकार ने उससे संपर्क भी किया, अभी उनकी स्थिति क्या है?
2: जो मैंने अभी लास्ट देखा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनसे बात कर रहे थे, उसका वो क्लिप हम लोगों ने देखा था. वो बात भी कर रहे हैं, स्थिति में सुधार भी आ रहा है. हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना वो जल्दी से जल्दी वहाँ से अपना उनकी हालत सही हो और अस्पताल से बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जितनी ब्रेवरी का, जितने साहस का, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है. उनको तो पूरा विश्व सम्मान दे रहा है, लेकिन उनके साथ साथ हमारे भारतवासियों का भी सीना गर्व से फूला है कि एक आदमी के इस बहादुरी के इस काम से 174 निर्दोष यात्रियों की जान बची. ये एक बहुत साहसी, एक उनके तरफ से बहुत ही साहसी कदम था. लेकिन इसके साथ साथ ये जो विश्व में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, इसके ऊपर भी, इसके लिए भी, आतंकवाद को लेकर भी एक संदेश जाना चाहिए देश दुनिया में कि जितने भी हमारे पीस लविंग देश हैं, उनको सबको एक होकर इस दुनिया के इस बढ़ते हुए आतंकवाद से, इससे हम लोगों को एक साथ, जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक इससे छुटकारा नहीं मिलेगा.
3: देश अपने साथ है, देश के अपना जो अग्रणी लोग है वो भी अपने साथ है, विश्व के अग्रणी लोग भी अपने साथ में स्मिथ की जो बहादुरी की है उनके ऊपर गर्व कर रहे हैं. हमको भी अच्छा लग रहा है. नेता ने, वो लोग ने सल्यूट किया, हम लोग को भी सल्यूट कर रहे हैं कि भाई हमारा कुटुंब का आदमी ने इतना एक पूरा बड़ा काम करके दिखाया. हम लोग बहुत खुश थे उससे. जैसे दो तीन बार बात हुई, वो लोग एकदम हैप्पी. पहले सब टेंशन में बात करने को भी राजी नहीं थे, बाद में कल जो बात किया तो एकदम खुश खुशलत में बात किया, और जाके देखने के बाद सबको दिल को तसल्ली हो गई. और वहाँ पे इलाज भी बरोबर चल रहा है, तो हिसाब से भी बहुत संतुष्ट है लोग. तो हम लोग को रखा वहाँ पे सिक्योरिटी है कि नहीं, तो मैंने बताया कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल है, और मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर 1-2 किलोमीटर जाएगा मेन गेट से, तभी तो हॉस्पिटल अंदर आ जाए. और एकदम बेटर, इससे बेटर इलाज हो रहा है उनका.
4: ऐसी फीलिंग है कि जैसे अपने घर के बुजुर्ग, अपने दादाजी अपने से बात करते हो ना, ऐसा लगा. जिस तरह से इतने प्यार से बात करना, और मेरे भाई से बात की उन्होंने, उनकी पत्नी से बात की, स्मिथ की वाइफ से भी बात की, और उनको एहसास दिलाया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और स्मिथ स्वस्थ होकर वापस आ जाएगा. और कल थोड़ी देर उन्होंने गुजराती में भी बात की उनसे, जय श्री कृष्ण बोला उनसे, और अपनी हनुमान चालीसा की भी बात हुई. तो एक बहुत ही ऐसा ये अवसर, मतलब ये मैं इसकी बयां नहीं कर सकता हूँ कैसे उसको बोला जाए, बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। हमेशा रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ लगाते हैं, उसके डैडी भी हमेशा उसका नित्य क्रम है कि वो हनुमान चालीसा करेंगे, जैसे हनुमान चालीसा पूरी हो जाएगी लाइट बंद करके सो जाते हैं हम लोग। और आज भी स्मित जब भी हनुमान चालीसा चैंट करता है अपने बेटे को गोदी में बिठाता है और वो हनुमान चालीसा चैंट करता है हमेशा।
5: I'm standing right outside the Zayed Military Hospital in Abu Dhabi, where Captain Smith, the pilot of Fly Dubai flight, which was in which he was attacked by his co-pilot, who is said to be of Omani origin, is undergoing the treatment. Just a short while back, the Crown Prince of Dubai had visited this hospital in Abu Dhabi, which is a high security hospital. He is undergoing the treatment here after being attacked by a co-pilot who is said to be of Omani origin. The details of the co-pilot who attacked the Indian pilot Captain Smith happens to be such that his father is of Omani origin, his mother is of Syrian origin, and this person was born and brought up here in UAE. The details are emerging that perhaps during his career in the past few years he had visited Syria. There are material, as per the Western media sources, suggest that some incriminating material suggesting that he was under indoctrination or he was radicalized, and perhaps that is why he attacked the co-pilot. The security agency sources within Israel claim that perhaps he wanted to crash the plane inside Israeli territory. As of now, the interrogation of that pilot is going on in UAE because the Saudi authorities had extradited him or sent him back to UAE, both the pilots, Captain Smith, who is undergoing the treatment, as well as the co-pilot of Omani origin, who is accused of the attack in that particular plane.
0: The UAE public prosecution says that Fly Dubai co-pilot attacked Captain Smith with an emergency crash axe before attempting to take control of the aircraft. Prosecutors have described the incident as a terrorist act. But why was an axe inside the cockpit? A crash axe is a standard emergency equipment. It's designed to help the crew break through the panels if need be, clear obstructions and respond to emergencies. It's not a regular household axe, but a specialized safety tool carried on aircraft. Reports say that the axe was not smuggled on board and was kept inside the cockpit for quick access during emergencies. They're also examining how the emergency tool was used in this entire attack. Now, the man accused of attacking Captain Smith Machar inside the cockpit of Fly Dubai flight FZ1073 has now been identified. As we told you, Haman Al-Hamami was an Omani national born in UAE to an Omani father and Syrian mother. His aviation career has spanned in Oman, Morocco, UAE, but his past is now under intense scrutiny. Who is Haman?